गुरुआं पीरां फकीरां योध्यां बहादुरां दी धरती पंजाब। पंजाबी मां दे होनहार रखवाले पुत्तर जो अपने आप नूं नशियां विच बर्बाद कर रहे ने, उन्हां नूं चलमन सिंह टंडे दी कलम मिस पूजा दी जवानी कुछ इउं कह रही है।

Big good morning to you, Sunrise Radio 103.2 FM. आप सुन रहे हैं Right Now. Welcome back after the hit of the hour. This beautiful song. मेरा नाम है अभी और मैं आपके साथ रहूंगा 11 बजे तक. I hope इस संडे के ब्यूटीफुल दिन की शुरुआत आप इंजॉय कर रहे हैं. अगर आप अभी अभी उठे हैं, then a very very good morning to you. कुछ ब्यूटीफुल से गाने मैं आपके लिए प्ले करने वाला हूँ. So stay tuned with me. I'll be right back. And the next song is specially dedicated to you.

0: गलियां गलियां घूमी ते पैरें दी जुत्तियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसां चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला है सिर्फ 2 पौंड ना कन्न सलाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसां पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dampukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste, and something new.

वाह, व्हाट अ लवली सॉन्ग, क्या गाना था यार। इस गाने के बाद आपका है स्वागत वापस इस शो पर सनराइज रेडियो 103.2 FM एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज ऑल्सो डेडिकेटेड स्पेशली टू यू।

Welcome back after this beautiful and classic flashback only on Sonal Radio 103.2 FM. और मुझे लगता है कि जरूर कुछ पुरानी यादें ताजा हुई होंगी इस गाने के साथ साथ. Well, right now मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पर. After the news, the been beautiful गानों का सिलसिला चलता रहेगा. तब तक enjoy कीजिएगा इन ब्यूटीफुल गानों को और एंजॉय कीजिएगा इस ब्यूटीफुल स्टार्ट संडे मॉर्निंग की. I'll see you on the other side. Once again, welcome back in the second hour of this show and welcome back after the hit of the hour. Sunrise Radio 103.2

0: देखा था, इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.
3: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the hour.

Once again, welcome back in the second hour of this show and welcome back after the hit of the hour. Sunrise Radio 103.2 FM, आप सुन रहे हैं right now. This is Abby this side. और I hope कि आप enjoy कर रहे हैं इन गानों को. जी हाँ, 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा और कोशिश करूंगा कि अच्छे से गाने आपके लिए मैं प्ले करूंगा और कुछ मीठी मीठी बातें भी हम करेंगे. The next song is right now, specially dedicated to you.

What a lovely song. Welcome back after this beautiful song on your Sunrise Radio 103.2 FM. मेरा नाम है एबी एंड गेस व्हाट, 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा आज इस संडे की सुबह. मतलब वीकेंड का दिन ऐसा होता है कि आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स जो आपके साथ नहीं रहते हैं, आप उन्हें कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं. सो इफ़ यू हैवन डन दैट ऑलरेडी प्लीज डू, उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा. वेल ऑन दैट नोट द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

Welcome back after the classic flashback, Mili on Sunrise Radio 103.2 FM. What a beautiful classic song here. Well, right now, मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, which is after the news, और तब भी beautiful गानों का सिलसिला चलता रहेगा. Stay tuned till 11 o'clock.

0: कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
1: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतिमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाएं रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 012-74-735-0-43 पर कॉल करें।
2: Experience something truly spectacular as the internationally renowned flower carpet comes to the UK for the very first time. From Thursday the 24th to Sunday the 27th of September, Centenary Square in Bradford will be transformed by over 300,000 colourful flowers. Visit for free during the day or see the carpet illuminated with a stunning sound and light show each evening from 7:30. Don't miss this once-in-a-lifetime event. Event produced by Bradford Culture Company.
3: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the hour.

welcome back after yet another beautiful hit of the hour. Sunrise Radio 103.2 FM आप सुन रहे हैं right now. This is Abhi This Side. 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा और once again a big good morning to you. और आशा करता हूँ कि इस दिन की आपकी शुरुआत काफ़ी अच्छी तरह से प्यारी तरह से जा रही है. इस आवर में भी काफ़ी सारे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स मैं आपके लिए प्ले करने वाला हूँ. सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड आई बी राइट बैक एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

What a lovely song. Welcome back after this beautiful song only on Sunrise Radio 103.2 FM. मेरा नाम है Abby and guess what? 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा आज इस संडे की सुबह. मतलब वीकेंड का दिन ऐसा होता है कि आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स जो आपके साथ नहीं रहते हैं आप उन्हें कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं. सो इफ़ यू हैवन डन दैट ऑलरेडी प्लीज डू. उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा. वेल ऑन दैट नोट द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

0: Classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?
1: गांधी जी ने मानवता को विश्व शांति की सौगात दी और वैष्णव जन के सद्गुणों की दुनिया को मिसाल दी।

Welcome back after yet another beautiful classic flashback on your Sunrise Radio 103.2 FM. Right now, मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, which is after the news, और तभी इन beautiful गानों का सिलसिला चलता रहेगा. So I'll see you on the other side.

0: इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Free courses at Shipley College. Free teaching assistant courses. Free health and social care courses. Free childcare courses. Free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.
3: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the hour.

once again, welcome back after the hit of the hour, only on Sunrise Radio 103.2 FM. And once again, a big good morning to you. मैं आशा करता हूँ कि इस दिन की शुरुआत आपकी काफी अच्छी तरह से जा रही है. इस शो के मेरे आखिरी आवर में आपका स्वागत है. जैसे मैंने कहा कि 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा. सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड ऑन सनराइज रेडियो 103.2 FM. काफी ब्यूटीफुल गाने आपके लिए हाजिर हैं इस आवर में भी. सो स्टे ट्यून्ड.

0: पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.

व्हाट अ लवली सॉन्ग, क्या गाना था यार। इस गाने के बाद आपका है स्वागत वापस इस शो पर सनराइज रेडियो 103.2 एफएम एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज आल्सो डेडिकेटेड स्पेशली टू यू।

वेलकम बैक टू द क्लासिक फ्लैशबैक ओनली ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम। मेरा नाम है अभी और आज इस सुबह 7 बजे से मैं आपके साथ था, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स टाइम टू गो। मेरी और आपकी मुलाकात होगी हमारे अगले शो पर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, लव्ड वंस, बी प्रोडक्टिव, बी क्रिएटिव एंड टेक केयर।

0: कफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉन्गलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
3: Experience something truly spectacular as the internationally renowned Flower Carpet comes to the UK for the very first time. From Thursday the 24th to Sunday the 27th of September, Centenary Square in Bradford will be transformed by over 300,000 colourful flowers. Visit for free during the day or see the carpet illuminated with a stunning sound and light show each evening from 7:30. Don't miss this once-in-a-lifetime event. Event produced by Bradford Culture Company.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-21-21 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-056-014, सोफी ज्वेलर्स।
2: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
3: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
2: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
3: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रैडफर्ड।
2: बुकिंग्स और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 01274-733-732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।

0: कफन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, Milton Keynes, and West London. With even more areas coming soon. Call 01274 735043 or email sales@sunriseradio.fm.
3: Experience something truly spectacular as the internationally renowned Flower Carpet comes to the UK for the very first time. From Thursday the 24th to Sunday the 27th of September, Centenary Square in Bradford will be transformed by over 300,000 colourful flowers. Visit for free during the day or see the carpet illuminated with a stunning sound and light show each evening from 7:30. Don't miss this once-in-a-lifetime event. Event produced by Bradford Culture Company.

खुले मैदान में कहीं मौजूद हैं गैरों के आसपास आप, या बैठे हैं हमारी तरह अपनों के दरमियान में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जी आयनो, वेलकम। खुशामदीद, कबूल कीजिए काशिफ की तरफ से। जी जनाब, मैं हूं आपका अपना काशिफ। सनराइज रेडियो पे जनाब आप हमें सुनते हैं। तीन घंटे की हफ्ते में एक बार, सिर्फ एक बार आपको तंग करने के लिए चले आते हैं, ज्यादा तंग नहीं करते हैं आपको। कहीं आप सचमुच में तंग हो गए फिर क्या बनेगा। जनाब 100.6 FM एंड 103.2 FM क्रॉस्ट वेस्ट यॉर्कशायर डीबी के जरिए आप हमें सुन रहे हैं ना। दिल में कह दे, डर है किसी का, दिल में कह दिया करें, सरगोशी में हाँ सुन रहे हैं। और जनाब ब्रैडफोर्ड, कीथली, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एकरिंगटन और मिल्टन कीन्स तक सुन रहे हैं ना। और दुनिया भर में आप हमें सुनते हैं सनराइज रेडियो .fm के जरिए। साथ निभाते रहिएगा अपनी मौजूदगी का एहसास, हमेशा की तरह हमें दलाते रहिएगा। एहसास दिलाएं या यकीन दिलाएं, पर दला कुछ जरूर दें, जो भी दलाना है। और जनाब ये एहसास और यकीन दिलाने के लिए हम भी कोशिश करते रहेंगे हवा पे बिखरती हुई अपनी आवाज के जरिए, आपकी समातों से होके आपके दिल के दरवाजे पे दस्तक देते रहेंगे अपनी आवाज से। इसी तरह जवाब में अगर आप भी कहते हैं सुना है, पढ़ा है, समझा है, क्या भला, कहते हैं कि ताली दो हाथों से बजती है, एक हाथ हमारा जनाब, हमारी आवाज आप तक, वापिस आपकी तरफ से दूसरा हाथ, यानी कि ताली बजेगी और गूंजता रहेगा ये जमाना आपकी और हमारे मोहब्बत खुलूस का गाएगा ये फसाना, जो हमें हमेशा रहता है बिल्कुल तरोताजा नया। एक एहसास कभी हुआ नहीं ये जज्बा हमारा आपके लिए पुराना। अच्छा, आज आपको एक सच्ची बात बतानी है। हमेशा खरी बातें बताता हूँ, दिल की बातें बताता हूँ, आज आपको यकीन करना पड़ेगा। और मैं शो के शुरू में ही अपने दिल का वजन हल्का करना चाहता हूँ। हमेशा आता हूँ, मैं एक्साइटेड होता हूँ शो करने के लिए, जब आ रहा होता हूँ ना बहुत खुश होता हूँ। अच्छा, आज खुश भी था, आज थोड़ा सा कुछ कुछ अजीब लग रहा था। इतने सालों में कभी अजीब नहीं लगा, आज अजीब लगा थोड़ा सा। और इस बात का गवाह हमेशा की तरह कहता हूं, जिसके हाथ में, जिसके कब्जे में हमारी आपकी डोर है जनाब, उस रब को गवाह रख के कहता हूं कि वाकई सच में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। आज रात हमने ख्वाब में भी, सपनों में भी, नींद में भी, यकीन करें पूरे का पूरा शो किया। और फिर हम शो करने के बाद उठे और फिर जनाब इधर आके लाइव आपके लिए शो की आज तैयारी की, तैयार हुए। हम मर्दों की क्या तैयारी होती है, आपको तो पता ही है। 1 2 3
और गो। खवातीन की तैयारी, हाँ बिल्कुल, एक मिशन होता है, एक मुहिम होती है, एक गोल होता है, एक टारगेट होता है, उसको अचीव करना होता है। हम मर्दों का क्या है, कहा ना 1 2 3 रेडी स्टेडी गो, फिर हम पीछे मुड़ मुड़ के शीशा नहीं देखते हैं ना। कहीं से काजल मिसिंग है, कहीं से सुरमा मिसिंग है, किसी दाएं तरफ शेड गहरा हो गया है, बाएं तरफ शेड हल्का हो गया है, बालों का कलर मैचिंग हो गया है कपड़ों के साथ, कपड़ों के साथ हील्स मैच कर रही हैं कि नहीं, और फिर बैंगल्स ज्वेलरी, आंखों में लेंजेस मैचिंग कर रहे हैं कि नहीं, आज मौसम के हिसाब से बड़े स्यापे होते हैं भाई साहब, आपको क्या बता। हमें भी बड़ी दूर से जाके पते लगे ये सारी मुश्किलात और स्यापे, ये सारे रोले खवातीन के लिए एक बड़ी एक चैलेंजिंग होता है। इसका एहसास मुझे जब हुआ ना, तो ना पूछे फिर पैरों तले से जमीन निकल गई। एनीवे जी, जमीन निकली हमारी जब हमने रात को ख्वाब में शो किया। अच्छा, अब ये बात मैंने आपको बताई क्यों, रब को हाजिर नाजिर जान के ये बात बताई मैंने आपको, ठीक है ना। अब आप पे है कि आपका कितना तवक्कल है अपने रब पे, आप यकीन करेंगे मेरी बात का तो करें, नहीं तो ना सही। हमने तो जान रब को देनी है, आपने भी रब को देनी है, आप यकीन करें तो ठीक है, वरना बात का मजा आपको नहीं आएगा। यकीन करेंगे तो मजा आएगा, हमारी सच्चाई को लेके साथ चलिएगा। और सुखी शोशा मारने की ना हमारी आदत है, ना हमें कोई फायदा है आपसे, ना कोई मतलब है, ना तो सांधे पौंड सानू चाहिए ने, ना आपकी सुखी वाह कार के लिए आते हैं, दिल बहलाने आते हैं रब की मखलूक का, दिल लगा के जान लगा के। तो इसलिए जनाब, अच्छा हुआ क्या, अब आपको मजा आएगा। जब हमने शाम को रात को शो किया नींद में, ठीक है, ख्वाब में यानी के, तो जनाब जो गाने मैंने नींद में आपके लिए लगाए, आज आपकी फरमाइशें तो होंगी, साथ साथ जो कॉल्स करेंगे हमें 01274306666 के जरिए, जी जनाब 01274306666 के जरिए आप साथ निभाते रहेंगे, आपके नाम होंगे, आपके खूबसूरत फरमाइशें होंगी, कोशिश करेंगे हमारे सिस्टम में जो जो गीत मिल गए वो जरूर हम आपकी पसंद के चलाएंगे। लेकिन जो ख्वाब में हमने चंद चढ़ाया, आज पूरा शो किया 3 घंटे का आपके लिए, वो भी तो आपके साथ शेयर करना है ना भाई साहब। तो वो गाने जो मैंने शो में लगाए, मतलब ख्वाब में जो शो किया आपके लिए, वो गाने आज मैं शामिल करूंगा, ठीक है, को बोल दो एक बारी, ठीक है, आप ना बोले फिर। हम ही इस गाने में आपको बताते हैं कि आपके प्यार खलूस में, आपकी याद में यहां शो करने तो आते हैं हफ्ते में एक बार, अब नींदों में भी शो करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में कहूं, सुने फिर आपके लिए, आई थिंक आई लव यू ऑल।

0: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
1: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
3: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतिमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाए रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 012-74-735-0043 पर कॉल करें।
4: Experience something truly spectacular as the internationally renowned Flower Carpet comes to the UK for the very first time. From Thursday the 24th to Sunday the 27th of September, Centenary Square in Bradford will be transformed by over 300,000 colourful flowers. Visit for free during the day or see the carpet illuminated with a stunning sound and light show each evening from 7:30. Don't miss this once-in-a-lifetime event. Event produced by Bradford Culture Company.
0: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
5: जी जनाब, आज की पहली कॉलर रही जरीना। जरीना, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और आप हंस रही थी हमारी बेबसी पे, कमाल हो गया। आप हंसे, हमारा बेशक वो क्या कहते हैं जनाब, हमारी वॉट लग जाए, बैंड बज जाए हमारा, आप हंसे। आप हंस रही थी कि काशिफ जी ये क्या, आज तो डबल शिफ्ट कर रहे हैं, ख्वाब में भी शो किया और उसके बाद उठे, जागे, तैयार हुए और आके फिर दोबारा आप शो करने लग पड़े और आप बहुत हंस रही थी। अच्छा लगा हमेशा इसी तरह हंसते हंसते कॉल किया करें। ये हमारी दुआ है जरीना जी के लिए, नहीं खाली, अब आपकी भी बात हो रही है हजूर। हाले हाले। काशिफ का इतना सा है कसूर, आपको भी दिल में बसाया है। हाले हाले। गलती हो गई हमसे, यह था हमारे दिमाग का फतूर। हाले हाले। अच्छा, जरीना जी ने एक और बात बताई, वो खैर की बात नहीं है जनाब। मौसम बदल रहा है, बताता हूँ मैं आपको बार बार, क्या करते हैं आप, ख्याल नहीं करते हैं आप अपना। नहीं, अब आपकी बात नहीं हो रही है, अब जरीना जी की बात हो रही है। जरीना जी, जनाब इस ठंडे मौसम में, बदलते मौसम में, बेईमान मौसम में कहीं चली गई हैं ब्लैकपूल लास्ट वीक, और जनाब ब्लैकपूल में ऊपर से हो गई बारिश अचानक से, और कहते हैं, मैंने कहा बीमार कैसे हो गई आप ख्याल नहीं करती अपना। कहती है नी काशिफ, ब्लैकपूल गई सा ते अपरू पई गई बारिश मारे अपर, ते बारिश नी वजह तू बीमार हुई हां, वरना ना सा होनी बीमार। हाय ता हुन फिर तुसा नाल लसना हो गया वादा, भाई छोड़ा सारे हां की तुसा आख्या हुन मैं अपना ख्याल कर सा, मैं वैसे हूं ठीक हो गई है थोड़ी बहुत, अभी आपकी सेहत बेहतर है और आपसे भी यही कहेंगे जनाब, मौसम बदल रहा है, होले होले आहिस्ता आहिस्ता, बड़ा बेईमान मौसम है। नहीं, ये वो मौसम नहीं जो बाहर आसमान पे बदलता है, ये हमारे दिल का मौसम है। आपके दिल का मौसम है। कुछ आपकी बातें सुन के, कुछ आपकी कॉल्स आ रही हैं, कुछ हमारे अंदाज जनाब बिगड़ रहे हैं आपके लाड प्यार से, कुछ आपके दिल में हलचल हो रही है शायद हमारी आवाज से, होले होले है ना, कुछ कुछ तो हो रहा है।

0: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
3: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.
0: Thank you for making Sunrise Radio your favourite Asian radio station.
4: जनाब यासर भाई, ग्रेट होटन BD7, बहुत शुक्रिया यासर भाई, याद कर रहे हैं हमें और साथ में काम कर रहे हैं, ये ठीक है। टैक्सी ड्राइव कर रहे हैं और सभी टैक्सी ड्राइवर्स के नाम, आप सुनना चाहते हैं गाना, पाउंड छाप रहे हैं बांग बांग जनाब अपने बटुए में, क्या करें जनाब, आजकल जितना मर्जी बड़ा बटवा हो जाए, कहते हैं कि महंगाई बड़ी हो गई है, बिल बड़े हो गए हैं, जितना मर्जी काम कर लें फिर भी जनाब कम लगता है। सही हो गया जनाब। अच्छा, इसके अलावा हमारे साथ मुजफ्फराबाद से तबस्सुम है जनाब, तबस्सुम ने हमें शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से, अंदाज से कहा वेलकम, और तबस्सुम हम आपको कहते हैं मुजफ्फराबाद की खूबसूरत सी वादियों में। आप आती हैं बहार आती है, जब जब आती हैं हर बार आती है बहार। और जनाब ये खूबसूरत से गीत आपको, आज मौसम आपने नहीं बताया मुजफ्फराबाद का कैसा है, लेकिन खैर कहने वाले कहते हैं मुझे नहीं पता, सुनी सुनाई बातें भी तो कभी कभी करनी चाहिए ना, आप जैसे सियाने बंधों के साथ, तो फिर आप उसे सीखने का मौका मिलता है, आप आते हैं उस बात को आगे बढ़ाते हैं, फिर मुझे यकीन हो जाता है कि जिस किसी ने भी बात की जनाब, वो बसंत के दिन पतंग उड़ाते हुए नहीं की या बंटे खेलते हुए नहीं की, किसी ने बड़ी सोच विचार के बाद ही ये बात की जो मेरे तक पहुंची। तो मैंने जो बात सुनी जनाब, क्या ये बात सच है? कहते हैं दिल का मौसम अच्छा हो, दिल का मौसम अगर अच्छा हो तो सारे मौसम अच्छे लगते हैं, ये कोई बात है? बाहर बारिश हो रही हो, जरीना जी बीमार हो गई हैं, उनको जनाब इतना फ्लू बुखार और जुकाम रहा, और ये सब कहते हैं कि जी बाहर मौसम जैसा भी हो, दिल का मौसम अच्छा होना चाहिए तो सारे मौसम अच्छे लगते हैं। बताइएगा कि क्या इस बात में वाकई

जी जनाब, बड़े ही जबरदस्त जबरदस्त सीकोल्स का सिलसिला शुरू हुआ और जज से ही मेरा दिल डूबना शुरू होता है कि आज फिर दोबारा सिर्फ कुछ खवातीन्स की कॉल आई। खवातीन्स, हाय हाय हाय हाय, कौन न मर जाए मेरी इस गुलाबी उर्दू में, और कोई मरे ना मरे मेरी खुद जान निकल जाएगी। कभी खुद की बातों पे जनाब जरा गौर अगर मैंने किया, इसलिए मैं गौर नहीं करता। हाय सब खवातीन्स, हाय हाय हाय हाय, ठंड बढ़ गई मेरे अपने कलेजे में, आपका नहीं पता। अच्छा जनाब, सभी खवातीन की जो कॉल्स आई तो सादी जमान भाई ने कॉल की पहली बार। जमान भाई बहुत बहुत शुक्रिया हडर्सफील्ड से आपने हमें याद किया। आप कहते हैं जनाब आपकी बातें सुन रहे हैं, पता नहीं क्यों दिल किया कि आपसे बात भी की जाए। वैसे जैसे आप बातें कर रहे हैं लगता है कि आप हमसे बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा दिल चाहा कि हम आपको कॉल करें और आपको बताएं कि यू आर डूइंग अ गुड जॉब। थैंक यू सो मच जवान भाई। और जनाब हडर्सफील्ड से जमान भाई के नाम आने वाला खूबसूरत से गीत, और उसके बाद हमारे साथ एक राजा साहब आए थे और राजा साहब की कॉल, उन्होंने शिकवा ही अभी किया था कि जनाब आपको कॉल मिला रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने गलबन गिला करना था। जो मेरा अपना छोटा मोटा सा नाकस सा एक्सपीरियंस है वो यही कहना चाह रहे थे, लग रहा था मुझे कि या लाइन बिजी तो या फिर कॉल आप क्यों नहीं पिक कर रहे। तो राय साहब दोबारा कॉल कीजिएगा, फिर आपके कलेजे में भी ठंड पड़ जाएगी। आपका जो शिकवा था, मुझे लगा कि आप शिकवा करने आए थे कॉल के सिलसिले में, या बिजी या फिर पिक नहीं हुई, तो आए जरूर आए जनाब, कलेजे में ठंड डाल देंगे। सबके कोशिश यही है मीठी मीठी बातें करके। और अभी आंटी दीपा भी अपने दांत पीस रही हैं, 32 नहीं होंगे अभी मैं पूछूंगा, वो कॉल पे हैं, कितने दांत हैं जो वो इस वक्त मेरे इंतजार में पीस रही हैं। लेकिन वो इंतजार करने वालों में से हैं, वो नहीं आती और जाती राजा साहब आपकी तरह, वो जनाब डट जाती हैं। अगर डट गई तो फिर डट गई। अच्छा और कौन था, अरे वाह रुकी बाजी, आपने भी एक लाइन हमारी जो फोन लाइन पे एक साइड पे आपने कब्जा किया हुआ था, लेकिन आप चले गई, आप हिम्मत हार गई ना, आप दीवा आंटी की तरह डटने वालों में शामिल नहीं हो पाई आज। बारा जनाब ऐसे ही कोई कड़मासा मचा हुआ है, प्यार मोहब्बत का खलूस का चाहतों का सिलसिला भीड़ लग गई है। अच्छा अब राजा साहब तो आएंगे दोबारा। जमान भाई ने एक बात पूछी, उन्होंने कहा ख्वाब में सो रहे हो, आपने कोई बात नहीं बताई कि खाली गाने ही लांदे रहे हो, ख्वाब में जो आपने शो किया वो बात हमें बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो उसके बारे में कुछ मजीद रोशनी डालें, और गाना जो मर्जी लगाएं, गाने सारे अच्छे हैं अभी तक के, लेकिन वो जो ख्वाब वाली बात आपने बताई कि आप हमारे लिए शो करके आए हैं जनाब ख्वाब में भी आज रात को, तो और क्या हुआ वहां पे कुछ बताएं ना। मैंने कहा गाने मेरी कोशिश होगी वही वाले लगाऊं जो मैंने ख्वाब में शो में प्ले किए, लेकिन हाँ एक अजीब सा एनवायरनमेंट था, मतलब स्टूडियो में मैं अकेला होता हूँ जब मैं शो कर रहा होता हूँ, आप सुन रहे होते हैं, आप मेरे साथ होते हैं आवाज के जरिए, बिल्कुल आप सारे मेरे साथ हैं, लेकिन स्टूडियो में कोई भी मौजूद नहीं होता, मैं कली जान होता हूँ, मैं कली जान, साथ में कोई और नहीं दूसरा, मैं कली जान, मैं खुद को कह रहा हूं जान, मेरी अकेली जान, यानी कि मैं खुद अकेला होता हूं। तो जनाब उन्होंने पूछा है तो बताना तो पड़ेगा, उन्होंने कॉल की, हिम्मत की, वक्त दिया, तो जनाब स्टूडियो में ऐसे भरा हुआ स्टूडियो, और स्टूडियो में बहुत सारे लोग, बहुत सारी भीड़। अच्छा फनी बात यह है कि बहुत शोर शराबा स्टूडियो में, हम हंगामा, ऐसे बिल्कुल भीड़ और बहुत सारे दोस्त अहबाब मजे से इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही गाना खत्म होता है और मैं माइक पे जाके जैसे अभी बोल रहा हूँ,
जैसे ही मैं बोलना शुरू करता हूँ तो एकदम से वो सारी भीड़, सभी दोस्त अपने जो जिन्होंने हंगामा बर्पा किया हुआ था गाने के दौरान स्टूडियो में, सनराइज के स्टूडियो में, वो सारे एकदम से खामोश हो जाते हैं मेरे बिना उनको बोले कि भाई मैंने ऑन एयर जाना है, बात करनी है माइक पे। तो एकदम से इतनी सारी भीड़, वो खुद ब खुद खामोश हो जाते थे। कैसी बात है, कैसा खूबसूरत ख्वाब है, वेल ऑर्गेनाइज्ड। आय हाय, यानी कि जितने भी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स और वैल्यूज हैं वो ख्वाब में भी जनाब ऑफ द मार्क हैं। मेरे ख्वाबों में भी अब आपके मुझे तंग करते हैं आप, छेड़ते हैं, कभी सामने भी तो आए ना, हिम्मत दिखाए ना।

0: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक।
1: जी जनाब, मेरे जो ख्वाबों में आते हैं वो सामने भी आएंगे और कॉल्स भी उन्होंने की हैं। आपको बताएंगे कि किस किस ने बताया है कि जनाब सपनों के अलावा भी अब हम आपके सामने आने की कोशिश करेंगे। और कुछ सामने आए हैं लेकिन मेरा ध्यान नहीं पड़ा। उन्होंने बताया है कि हम कहाँ कहाँ आप पे नज़र रखते हैं, तो वो भी सिलसिला आपके गोश गुजार करेंगे जनाब। बड़े मज़े की वो एक महफिल सज चुकी है और आपको टाइम बता दें, क्योंकि टाइम पे ही हर काम करना चाहिए, खाना पीना और सोना जागना और हर चीज़ टाइम पे होनी चाहिए। ख़ास तौर पे इस यूके यूरोप में हर चीज़ एक तरतीब से होती है। और पाकिस्तान नहीं है कि जहाँ पे पाकिस्तान या इंडिया में आप जनाब दो तीन किन्नू छील के काला लून ला के धुप्पे बह जाओ, तो ना टाइम ते दा पता ते ना किसी और चीज़ का, तो मौजा ही मौजा। एनीवेज गल दूर निकल जाएगी। इससे पहले कि मैं भी गवाच जाऊँ अपनी ही बातों में, आपको बताएं कि टाइम हो चुका है दिन के 2:47।
2: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
3: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
4: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
3: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
4: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
5: Official media partner, Sunrise Radio.
6: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dampukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chooza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant. Tradition, taste, and something new.
2: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
5: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
2: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you

Sunrise Radio Listeners' Choice Awards 2026 are coming soon, celebrating the businesses, organizations, venues, and artists you love. Voting will be exclusive to Listeners Club members, so join free now at sunrise.radio and keep listening for more details. और जहां वह गाना आप सुनेंगे पूरे का पूरा सुनेंगे फिकर नॉट टेंशन नहीं लेने का टेंशन देने का ठीक हो गया अच्छा लियाकत भाई जान आखने के तुसन ने सामने बैठे हां मैं आई कुत्ता बैठे हो आने सरकार तुसन ने नेड़े तेरे स्टूडियो ने कुदराया वहां जिस तरह तुसन साढ़े दिलाच बैठे हो असम भी तुसन ने सामने सामने हां तको तो सही लियाकत भाई फिर मैं आँखा मलिया दो हाथा नाल सुनियो फिर मैं तकिया ना फिर तो समी दिसे हो लियाकत भाई रश बहुत सारा सी ना अपने ना पर हूं तुसा दिसे हो ये चन्ने और चमकने पे हो माशाला तो जदू हसने हो तो ना पूछो ऐ ऐ ऐ ऐ अली मुस्क ऐ ऐ ऐ तको ना हूं शीशे तको ऐ जड़ी मुस मुस करने हो ना तुसा जान कट सो किसे नी नजर ना लग गया तुसा कि ऐ मुस मुस ही रखे हो इसी तरह ता और सोने दिसने हो माशाल्लाह माड़ा वीर कलेजे च लगना सीधा बनी ता तीर लियाकत भाई आने जनाब कन्ना भी तुसा नी वाज बुझने हो ते ना पूछो क्या होना मैं दसो ना कोई ते दसे ना क्या होना क्या सारे आई के ही बाड़े हो कुछ ना कुछ होना पर बोले नहीं हो के होना क्या वे आने सरकार कुछ होना मैं दोस्ता एवें कम है कि ना चाहो ना खाली पी ली सुकिया तुसा ये जनाब चाबी ना भरो कसम इो गल हुई उन्होंने इो गल हुई ना पापा लियाकत भाई आने ना जी ना चाबी ना भरने यकीन करो स्वाद अच्छा तक कॉल करने चलो तुसा स्वाद लवो तो नाल तुसा जाब भी चाई किंदी ना मिकी पिछे वो तूते नी आवाज आई सी जैसे ही तुसा मिकी कॉल

बॉलीवुड लासां ते गल पटवारी च बासां जे पागल आसां साड़ी दीवानगी ना तुसा ना करसो अंदाजा बहु दीवाने आसां सुनने च ही आया सने बारे च लोक बाणे

0: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक।
1: जनाब सनराइज रेडियो के स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि टाइम हो चुका है 3:08। Fancy a bit of fun, visit Sunrise Play and help Raj race back to the studio in Sunrise Studio Rush. Test your film knowledge with our Bollywood quiz or discover which Bollywood character you are. Play now at sunrise.radio and join the free Sunrise Listener Club to unlock even more. Sunrise Music. जी जनाब, ऑर्डर हमें आया और ऑर्डर किया हमें, बहुत सारी कॉल्स हमने कोशिश की और जनाब साड़ी कुर्सी जनाब साढ़े वजन नाल थले बह गई है या फिर इहदी एक्सपायरी डेट आ गई है, कोई तो कम हो गया। नहीं जनाब, साडा वजन किवें वधेगा, जरदा प्लेट भर के उत्ते दही पा के उत्ते चीनी 3 चम्मच पा के पी के आओ ते उहदे नाल उहदे बाद दुध पत्ती दा वड्डा जिहा कप पी के आओ, उहदे नाल वजन वध जांदा है। नहीं ना, ले हफ्ते बाद एक वारी खाली जरदा जरदे दी प्लेट की कहंदी है, नहीं ना वधदा वजन। ओ जनाब राजा साहब, तुहाडे नाल गल होई, थाडी पंजाबी आपणी एड्डी सोहणी है, तुसीं कहंदे हो नहीं जी तुसीं पंजाबी, जदों गल करदे हो ना ते साडे दिल नूं खिच पैंदी है। मैं कहा ना करो, तुसीं भी आयो लियाकत भाई यार चाबी भरन आयो। कहंदे ना करो जी, असी सच्ची गल करने आ जदों करने आ, ते जे सच्ची गल ना होवे फिर असी करदे ही नहीं आ। असी तुहानूं थोड़ा जिहा छेड़िया छाड़िया ते राजा साहब छेड़ गए। कहंदे जनाब असी तुहानूं अपने दिल दी फीलिंग्स दस रहे हां ते मन तां लगदा तुसीं चाबी भर रहे हो सानूं। मैं कहा नहीं जी, हासा मजाक करीदा। मैं कहा दसो कि जान होया किवें इधर दा राह भुले हो। कहिंदे सरकार पिछले 2 वीक हो गए ने, असीं तुहानूं कॉल करना चाह रहे सां, कदे सच्ची पुछो ते मैं बिजी हो जांदा सां कि कदे तुहाडी लाइन बिजी हुंदी सी ते कॉल नहीं जे मिली। कहिंदे ना अज मैं कसम पाई सी। मैं कॉल करनी है ते कॉल करके घर जाना है, इंज मैं नहीं जाना। गल मुक्की ना जनाब, यह जिहड़ा इरादा तुसी अज कीता सी ना राजा साहब, यह तुसी पहले 2 वीक कर लैंदे ना, पक ठक कर लैंदे दिल दिल दे विच, ते फिर साडी गप तुहाडे नाल हो जाणी सी। ते साडे दिल विच यह जिहड़ा तुसी गार्डन गार्डन कीता ना, आ जिहड़ियां क्यारियां तुसीं बना दित्तियां ने फुल दियां, गुल गुलजार दियां क्यारियां तुसीं अज बना गए हो, अंग्रेजी च की कहिंदे ने गार्डन गार्डन कर गए हो साडे दिल नूं। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੇਟ ਕਿਆਰੀਆਂ ਖੁਣਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲੇਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਾਰਡਨ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਕੋਲਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਹ ਕਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਕੋ ਬਤਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕੋਲਸ ਕੀ ਤਰਫ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਹਮਾਰੀ ਸਕਰੀਨ ਪੇ ਜੋ ਕੋਲਸ ਹੋਲਡ ਪੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨਕੀ ਕੋਲਸ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਨ ਉਨਕੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਰ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਆਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਫੇਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਹੋ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਨਿਕੰਮਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਨਿਕੰਮੇ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਘੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਅਤੇ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਂ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਾਤਰ ਮਦਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਨਿੱਕਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਲੂਰ ਲੂਰ, ਆ ਲੂਰ ਲੂਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਘਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਿਕੰਮਿਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਨਿਕੰਮੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੇਰੇ ਨਿਕੰਮੇ ਯਾਰ, ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਘਰ, ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਘਰ। सुबह दा तू लूर लूर करना पे बार ते हुण शामी आके बड़िया तू घर। तो जनाब जिनके वालदैन हयात हैं उनको पता है और जिनके नहीं हैं उनको पता है। हाय क्या बताएं क्या ना बताएं। ठंडा पानी पी पी के दिल करता है कभी कभी बस मारी जाए। अच्छा कल हमारे दोस्त से एक मुलाकात हुई। अब कौन सी बात किधर जा निकली है यार। क्या यार काशिफ तू भी ना। नहीं जनाब ये गाना अब हमने नहीं लगाना। होए होए मूड बदल गया जनाब। वो जो है ना और जनाब मूड ऐसा बदला कि आपको बात सुनाते हैं। अब सुनानी पड़ेगी बात। क्या बात है कि बात ये है कि जनाब कल हमारे दोस्त बड़े अरसे के बाद हमें मिले और उनसे गपशप हुई। तो बड़े ज़माने के बाद मिले तो उन्होंने बताया। हमने उनसे पूछा उनके डैड का हाल अहवाल और हमने कहा यार बताओ आप से बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई है क्योंकि 5 साल पहले उनकी वालदा का इंतकाल हुआ था जो मुझे याद था। तो सालों साल बाद कभी कभी मुलाकात होती है कुछ दोस्तों के साथ। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया। मैंने कहा यार बताओ आपके डैड कैसे हैं। उनके डैड बड़े ज़ईफ़ हैं और काफ़ी उम्र के हो गए हैं लेकिन माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं और वो अपनी लाइफ में अभी भी उनकी वालदा के चले जाने के बाद भी। तो जनाब हमने उनसे पूछा हमने कहा यार बताओ कि आपके डैड की सेहत कैसी है अब। तो इज डूइंग ऑल राइट। तो उन्होंने बताया उन्होंने कहा कि डैड हमारे साथ ऑफिस में जाते हैं और काम पे भी जाते हैं। उनके डैड 85 ईयर ओल्ड के हो गए हैं माशाल्लाह। तो पिछले 5 साल पहले जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ हमारे दोस्त की वालदा का तो अंकल अकेले हो गए। ठीक है ये खुदा गवाह है ये कल बात हुई मेरे उन जानने वाले मेरे दोस्त से मुलाकात हुई। तो बड़ी लंबी चौड़ी गपशप हुई। तो उन्होंने कहा कि जो है ना उनके डैड जो है ना वो अकेले पड़ गए। तो उन्होंने बहुत कहा कि डैड आप जो है ना अब लाइफ को इजी ले रिलैक्स हो जाएं। वो 3 भाई हैं तीनों जवान हैं माशाल्लाह बाल बच्चेदार हैं तीनों के अपने अपने घर हैं। तो उन्होंने अपने डैड से कहा कि आप हमारे साथ आके रहना शुरू कर दें क्योंकि पहले उनकी मम जब हयात थी तो वो उनके मम डैड अपने घर में रहते थे। अब उन्हीं बेटों के पास ही उसी गली में घर था। तो जब उनकी वालदा चली गई इस दुनिया से तो उन्होंने अपने डैड से कहा कि आप आके हमारे साथ रहना शुरू करें तीनों बेटों में से किसी के घर भी। तो उनके डैड क्या करते थे कि अब उनकी रूटीन चेंज हो गई और अब उन्होंने रात को बेटों के पास रहते हैं अपने एक बेटे के घर रहते हैं और उसी गली में 2 घर छोड़ के घर है उनका अपना। तो वो सुबह अपने घर में उसी तरह अपनी रूटीन के मुताबिक फ्रेश होते हैं तैयार होते हैं और मेरे जो दोस्त हैं मेरे उनके ऑफिस में उनके साथ काम पे अपने ऑफिस में आते हैं बकायदा 85 ईयर ओल्ड के होने के बावजूद क्योंकि उनका अपना पर्सनल बिजनेस है ज़ाती बिजनेस है तीनों बेटों का। तो उनके डैड भी शुरू से उनके साथ होते थे बल्कि डैड का बिजनेस था तो बेटों ने साथ में शामिल हुए। तो उसके बाद अभी तक वो उनके साथ एक्टिव हैं माशाल्लाह बिजनेस में। तो वो उन्होंने बड़े मज़े की बात है जो मैं बात बताना चाहता हूँ जिसकी वजह से मूड चेंज हुआ गाना मैंने उतार दिया लोंग लाची एकदम से। हमारी वालदा की बात हुई उनकी हमें मीठी मीठी गालियाँ देने की बात हुई बचपन की बात हुई तो एकदम से मेरे जहन में कल वाली बात आ गई। तो बहुत सारे दोस्त ऐसे भी सुन रहे होते हैं जिनके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं भी होते हैं तो उनको भी हमने रिलेट करना होता है ताकि वो भी रिलेट कर पाएँ हमारी गपशप के साथ या हम उनके साथ। और जिनके हयात हैं वो उनको पता लगे कि माँ बाप में से कोई एक चला जाए तो जो पीछे रह जाता है ना आपके डैड या आपकी मम दोनों में से कोई एक चला जाए तो जो पीछे रह जाता है वो क्या करते हैं उन पे क्या गुजरती है उनको आपकी कितनी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो जनाब उनकी जब वालदा 5 साल पहले फोत हुई तो उनके डैड ने एक रूटीन पकड़ी सुबह सुबह फ्रेश हों सुबह सुबह उसी तरह तैयार हों और ऑफिस उसी तरह जाएं लेकिन ऑफिस के रास्ते में 5 साल से ग्रेवयार्ड में वो हर सुबह जाते हैं और कब्रिस्तान में उनकी जो बेगम है 5 साल पहले फोत हुई उनकी कब्र पे जाके वहां पे वो कब्र को साफ करते हैं, देखते हैं, कुरान खानी करते हैं, दुआ करते हैं। अच्छा, मेरी आदत, मेरे दोस्त जानते हैं, बच्चों वाली आदत है, तो मेरे अंदर जब बच्चों की तरह सवाल आते हैं ना, तो मेरे दोस्त मुझे इसीलिए पसंद करते हैं कि मैं कोई बात ऐसे बना चढ़ा के नहीं करता, बनावट नहीं दिखाता। तो मैंने अपने दोस्त जब ये बात बता रहे थे तो मैं काफ़ी इन्वॉल्व भी हुआ, काफ़ी मूव्ड भी हुआ और इमोशनल भी हो गया मैं एकदम से, मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने कहा, तो जब सर्दी होती है, कोहरा पड़ रहा होता है, स्नो होती है या सुबह किसी टाइम बारिश तूफानी होती है, तो क्या आपके डैड फिर भी कब्रिस्तान जाते हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ मेरे डैड कब्रिस्तान जाते हैं तब भी, लेकिन तब बिल्कुल कब्र के पास गाड़ी पार्क करते हैं और हम उनसे कहते हैं कि बाहर ना निकलें। हाय, तो वो गाड़ी में ही बैठते हैं कब्र के बराबर और वहीं से कुरान खानी करते हैं, वहीं से दुआ करते हैं, थोड़ी देर खामोशी से वहां रहते हैं और उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं हमारे साथ ऑफिस में। लेकिन ये कभी कभार होता है, जिस दिन मौसम बड़ा ही तूफानी हो, बड़ा ही ज्यादा खराब हो, वरना डैड की रूटीन है कि वो कब्र पे जाते हैं, बैठते हैं, सफाई सुथराई करते हैं, दुआ करते हैं, कुरान खानी करते हैं और 5 साल में से कोई दिन भी, ये नहीं कि सिर्फ ईद हो, शबरात हो या कोई ख़ास दिन हो या मम की बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, नहीं नहीं, कहते हैं कोई दिन भी एक ऐसा नहीं गुजरा कि हमारे डैड हमारी मम की कब्र पे ना गए हो 5 सालों में। तो जनाब, ये बात इसलिए बताई कि अगर आपके पेरेंट्स में से दोनों हयात हैं तो आपके पास दुनिया के कुल खजाने हैं। शुक्र अदा करें, रब को नहीं देखा, रब की कुदरत देखी आपने, रब की शान देखी, लेकिन मां बाप के रूप में आप रब देखते हैं। जो मां बाप का नहीं हुआ वो रब का कैसे होगा? जितनी भी नमाजें पढ़ लें, हज कर लें, उम्रे कर लें, बातें कर लें, मैं कोई मौलवी नहीं हूं, कोई आलमे दीन नहीं हूं, लेकिन मेरे नाकस इल्म के मुताबिक ये मेरी राय है और मैं गलत हो सकता हूं इसमें, जो मां बाप का नहीं हुआ, जिस मां के पेट में रब ने आपके जिस्म के अंदर रूह डाली, जो उस मां का ना हुआ वो रब का क्या होगा? तो अगर आपके मां बाप जिंदा हैं, मेक द मोस्ट यार, अपनी दुनिया अपनी आखिरत संवारो। और जिनके चले गए हैं जनाब, वो गिव अप ना करें, वो गिव अप ना करें, वो ऐसे काम करें रब की मखलूक के लिए, ताकि रब की मखलूक के साथ जब आप अच्छा सलूक करें ना, तो रब की मखलूक में से कोई हाथ उठाए और दुआ में कहे कि यार किस माँ का बेटा है ये, किस बाप की बेटी है ये, किस माँ बाप की परवरिश की हुई, तरबियत की हुई बच्ची या बच्चा है ये। सलाम है उस

0: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
1: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274056014 सोफी ज्वेलर्स।
3: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ईसॉल कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शरायत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
4: Looking for a quality home to rent?
5: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
4: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744462 or 077 900 3535. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
6: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जना रेस्टोरेंट ब्रैडफोर्ड में मनाएं।
7: बड़ी तकरीबात के लिए जना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
6: छोटी गैदरिंग के लिए जना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
7: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
6: बुकिंग्स और मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 01274733732। जना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।
0: थैंक यू फॉर मेकिंग सनराइज रेडियो योर फेवरेट एशियन रेडियो स्टेशन।

जनाब बहुत बहुत शुक्रिया सभी दोस्तों का बहन भाइयों का अपनों का और खास तौर पे आपका जी जनाब आपकी बात कर रहा हूं जिन्होंने कॉल नहीं की लेकिन आराम से सुन रहे हैं चस लगा रहे हैं लगाएं चस जनाब साडा की जनाब आप समझ नहीं आ रही शुरू कहां से करूं और कहां पे खत्म होगी ये बात जो अब शुरू होगी क्योंकि बहुत सारे नाम जो है ना वो सच में समझ नहीं आ रही कहां से शुरू करूं मैं पेपर नु चुक के ना बिल्कुल अखियां दे कॉल कर लिया आंटी दीपा जनाब आपसे शुरू करते हैं आपने काफी इंतजार किया होगा कॉल्स इस तरतीब से आ रही थी कि लालच था मुझे आप सबसे बात करने का और आपसे बात करने का जो लालच है क्या करूं दिल के हाथों मजबूर हूं आंटी दीपा कहती हैं जी महक तारक है उजैर तारक है मरियम तारक है वो आपके पास है और उम्मे खानी आपकी निवासी वो कहते हैं कि ओ मेरी झोली च ता ओ माड़ी झोली च है ते तबीयत आने इन्ना नहीं खराब है थोड़ी जी कुजा नहीं घरै चू बेचू ते आने भी असा यखनी बनाई है इन्हें सारे वास्ते अज कुछ और नहीं बनाया मैं खाली यखनी बनाई है मैं आया इन्ना बीमार हाँ कि यखनी पिलावा तो आपू भी यखनी पिया तो तुझे मौसम बदलिया ना थोड़ा थोड़ा तो सारे बीमार होने जाने ते जनाब तुसें एक और गल भी बाई है तुस आया मैं यखनी बनानी है ना तो माड़े नाले नहीं यखनी कोई बना ही नहीं सकना मैं आया आंटी वो किया तुसा कुकड़ नहीं बजाया गोश्त नहीं बजाया बिच क्या बाने हो कोई फुल बाने हो क्या बाने हो अरे ना बाने ता कुकड़ी ता गोश्त ही लेकिन मारे नाले नहीं यखनी काशिप कोई नहीं बनाई सकना मैं आंटी मैं किस तरह मना मैं सादा है वहां सीधा भी है वहां पर जलेबी अर सीधा वहां ना इसना ही मतलब नहीं तुसा जो आखसो मैं अखा नूटी मनी जासा अरे नहीं मैं तुम बाणी है ना मारे नाले नहीं यखनी किस तरह कोई नहीं बनाई सकना अरे मैं यखनी बनानी हाँ बिच बाणी हाँ गोशत लेकिन जो तू यखनी तैयार हुई जानी ना तो फिर अडीक भी नहीं रहनी बिच मैं आंटी ये किस तरह अडियां कुतर जानियां आनियां गोशत इतना गालनी हाँ इतना गालनी हाँ इतना गालनी हाँ कि गोशत वक् हो जाना तो यखनी वक् हो जानी तो अडियां वक् हो जानियां तो फिर मैं बल्ले च जड़ियां अडियां ना वो मैं कड्ढी के बाहर सट्टी छोड़नी हाँ फिर यखनी जी तैयार होनी है काशिफ वो जो दूबीने ना तो लगी पता जाना पर इसने एक और भी सहस उन्ना फसाई है ना एक और खुजत कड्डी ने आने काशिफ फिर इन्ना की देनी है ना यखनी आपू मेरे को यखनी नहीं पीन होनी मैं आंटी आपू की ना रिस्क लेने अपने हथे नहीं यखनी पीने ना आने ना ना ना कर मस्तियां माड़े नाल काशिफ मैं पीनी हाँ आपू लेकिन आपू जड़ियां ना मैं दो ग्रीन चिल्ली बिच पानी हाँ ये मारे को मरीजा वाली यखनी को नहीं पीण होनी कसमे मैं भैनू ने घर भी जानी हाँ तो वह भी यखनी पिलानी हाँ तो मैं उसकी आनी हाँ ये बीमार हाँ तो मरीजा वाला ये सूप उधर भरा कर तो जे मी देसे तो दो चिल्ली दे ग्रीन तो मैं ग्रीन चिल्ली बिच पानी हाँ काशिफ तो मारे को जबान ने चस्के ने बगैर को नहीं पीण होनी यखनी मैं दसी छोड़ा मैं आंटी किसे की बाया है ना मारा भी यही हाल है मैं तो किसी ने घर मेहमान भी जाना ना तो मैं अपनी जेब दो ग्रीन चिली रखी होनी बाया है ना तो उस उन्हें क्या पता मर्चा कोई लून कोई घट बाने तो माड़े को फिका खाना तो खान ही नहीं होना आंटी ये हूँ कोई और किस तरह गल अगर टोरी ना छोड़े अपने थोड़ी रखी तुसा ये आंटी दीबा की ना आखना ये वास्ता है तुसा की आखना ए तुसा की जड़े मुस मुस दंद कड़ने पे हो ना इस टाइम ये राज मैं तुसा की बाया किधर भी जाना तो मैं अपनी जेब दो ग्रीन चिली रखी होनी तो फिर उत्थे जाना रोटी खाना तो चुप करके जेब च ग्रीन चिली कड़ना तो जनाब सालने च या सूप या जो कुछ भी होना रोटी टुकड़ तो उसने च बाई किन्ना तो नाल खाई किन्ना इस नाल होना कि मारी जबान ने जरा स्वाद है ना
ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਸ਼ਿਵ ਸਾਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿਆ ਵੈ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕਿਆ ਕਰੀਏ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਘਰੀ ਘਰੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛਾ ਮਾਹੀਨ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਕੋਲਰ ਔਰ ਜੋ ਹੈ ਉਨਕੋ ਹੋਲਡ ਪੇ ਲਗਾਏਂਗੇ ਜਨਾਬ ਪਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਰੱਖੀਏਗਾ ਮਾਜ਼ਰਤ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਜੋ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਕੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਏ ਹੈ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਚੰਨ ਚੜਾਏ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੰਨ ਇਸ ਵਕਤ ਹਮਨੇ ਸਜਾਨੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਕੀ ਸਮਾਤੋਂ ਸੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਕੇ ਦਿਲ ਮੇ ये चन्न सारे सजाने हैं जिस जिसने आके चन्न चढ़ाए हैं 01274306666 के जरिए आपने कॉल्स की बहुत शुक्रिया अच्छा माहीन आपने कॉल की जी ना पहली बार कहती है कि आपकी बातें अच्छी लगी हैं और यकीन नहीं आ रहा कि आज के वक्त में कोई ऐसी बातें करता होगा लेकिन फिर भी आपको कॉल करके बात करना मुझे अच्छा लगा और आप जैसे रेडियो पे बात करते हैं वैसे ही आपसे ऑफेयर बात करके भी हमें बहुत अच्छा लगा तो कुछ अपने अपने से आप लगते हैं इसलिए कॉल की और साथ में आपने कहा किसी गलत फहमी में ना रहिएगा आप अपने अपने से लगे तो इसलिए कॉल की ठीक हो गया जो आपने कहा वो हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया ठीक हो गया अब इसका क्या मतलब था गलत फहमी में ना रही मजर भाई ने भी नहीं बताया ना राजा मजर साहिब आप ड्राइव करते हुए लीड्स की तरफ जा रहे हैं और जनाब हमारे पेटी पर आए हैं यानी कि आप भी किसी और रेडियो पे रेडियो प्रेजेंटर हैं और आप हमें सुनते हैं और बहुत ही आला जर्फ के हैं आप क्योंकि आप छोटे भाइयों की तरह आप हमसे लाड प्यार करते हैं शफकत करते हैं और बड़ा प्यारा रवैया रखते हैं और आपने गिला शिकवा जो किया वो क्या कहते हैं कि जो जिनका जर्फ बड़ा होता है ना वही दूसरों को कॉल करते हैं याद करते हैं और ये एहसास दिलाते हैं बल्कि मेरे जैसे डीढ़ बंदे को शर्म दिलाते हैं कि काशिफ शर्म कर जा इन्नी बारी तेनों कॉल की थी तेनों कोई या शर्म कोई नहीं ये मुझे मेरी मम्मी कहा करती थी अक्सर अक्सर बातों पे तो मजर भाई ये बिल्कुल अब मुझे आपने ये जो थोड़ी बहुत शर्मिंदगी का एहसास दिलाया है और आपने जो कहा है कि यार जदू करना मैं ही तेनों कॉल करना तेनों शर्म नहीं आंदी तो बिल्कुल आज मुझे थोड़ी बहुत शर्म आई है और जनाब आइंदा बड़े भाई को गिला नहीं होगा आइंदा हम वारी मुकाएंगे आपको कॉल करेंगे तो बहरहाल आप खुद बड़े अच्छे हैं मैंने बार बार कहा है आपके बारे में जितना कहूँ कम है और हम खुश नसीब हैं कि हमारे अपनों में दोस्तों में बड़े भाइयों में आपका शुमार होता है और जनाब आप ड्राइव करते हुए अपने काम की तरफ जा रहे हैं और आप खुद बड़ा अच्छा जो है ना लोगों का दिल बहलाते हैं लेकिन आपने जो है ना अपना जर्फ दिखाया हमारी हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए आप हमेशा कॉल करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया इसके जवाब में ये गाना सुनिएगा जरूर जाने से पहले अभी आप गाड़ी में ही हैं मुझे पता है महीन यही गाना आपके लिए भी होगा बिना किसी जनाब अब आप गाना सुनिएगा महीन और आप भी किसी गलतफहमी में ना रहिएगा इस गाने को सुनने के बाद गाना गाना ही है गलतफहमी में ना रहिएगा ठीक हो गया वारी मुक गई अच्छा रुखी ने कॉल की जनाब कहती है वरीसा और साहिल के लिए और उनके लिए कोई अच्छा सा गाना और कहती है साहिल जो है ना वो 18 साल का हो गया है लास्ट वीक तो अगर आपकी भी बर्थडे है इस वीक में या लास्ट वीक आपने सेलिब्रेट की है बर्थडे या आज के दिन आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो साहिल को हैप्पी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे और आपको हैप्पी बर्थडे अगर आप आज या आपकी फैमिली में कोई हैप्पी बर्थडे मना रहा है तो बिना केक खाए जनाब हम आपको विश करते हैं और ये गीत आपके लिए भी और सोनिया ने कहा जनाब काशिफ जी मैंने आपको दूसरी बार कॉल की है आपको जेलस करने के लिए मैंने कहा मैं जेलस कभी नहीं हुआ लेकिन आप कोशिश करें शायद मैं हो जाऊं आज तो सच में मैं हो गया किस बात पे पता है आपको मैं हैरान हो गया कि जेलसी इसको कहते हैं सोनिया आप कामयाब हो गई खुश हो जाएं आपने दोबारा कॉल की और आपने सिर्फ ये बताने के लिए कॉल की कि काशिफ मैंने आज भिंडी और गोश्त बनाया है हाय बच्चे की जान ले लें बच्चे की जान ले लेंगी आप भिंडी गोश्त बनाया जनाब सोनिया ने और साथ में कबाब भी बनाए हैं
अब बताएं कितना दिल मैं अपना संभालूं, कितना रोकूं इस दिल को, कितना बंदा डीट हो सकता है। मेरे जज्बात के साथ आप खेलते हैं, आपको ख्याल नहीं आता मैं हूं कि मैं अंग्रेजी में, उर्दू में, पंजाबी में, पटवारी में आपके लिए अपने प्यार के तराने गाता हूं, कसमें वादे करता हूं, और आप कलियां कलियां, भिंडी गोश्त और वो भी साथ में कबाब। But still I love you all.

0: gone explosion.
1: जी जनाब, explosion होंगे जमाने में. क्योंकि जनाब बातें ही आपकी ऐसी हैं, आग लगाने वाली बातें. और बर्मिंघम वाले कहते हैं आप खाते पीते कोई नहीं अपने घर से. मैंने कहा क्यों? कहते हैं आप हमारे खाने पे नजर रखते हैं. हाय. अच्छा, आपको जब पता लग गया कि मैं आपके खाने पीने पे नजर रखता हूँ. अच्छा, इमेजिन करें आप खाना खा रहे हैं और कोई बेचारा भूखा देख रहा है आपकी तरफ. बताएं मुझे आप क्या करेंगी? खा जाएंगी उसके सामने सारा, या उस बेचारे को कुछ शेयर करेंगी? नहीं किया ना आपने. आप मुझे बताएं भूखा कौन है साढ़े दो मचू, मैनु दसो. बेचारा कोई भूखा देख रहा है आपकी तरफ और आप उसके देखने पे इतराज है आपको, है ख्याल नहीं आया कि बांट के खा लूं.

0: बनाया जो बनाया, लेकिन एनीवेज आयशा आपने भी यही राय दी। आयशा बहुत बातें हुई, बहुत शायरी आपने सुनाई, और मुझे लगता है कि आप मेरी टीचर हैं, उस्तानी है, है ना। उस्ताद कहते हैं वो बाप के बराबर होता है, और उस्तानी आए आए, मुझे अब्बे अपने से बड़ी मार पड़ेगी। अब्बा जी, अब्बा जी हमारे जनाब बड़े ही जबरदस्त से इंसान, माशाल्लाह। हर बेटे को अपने बाप पे फख्र होता है और होना चाहिए, बात दूर नहीं निकलेगी। इस बार हम कंट्रोल रखेंगे अपने जज्बात पे। उनकी बताई हुई बहुत सारी बातें मैं आपसे शेयर करता हूँ, और वो बातें हमारे अहमद भाई को बड़े दिल को लगी। और अहमद भाई कहते हैं, मैं आपकी बातें जो पेरेंट्स के बारे में आपने बातें की वो भी गौर से सुनी आज भी, और हमेशा आपको गौर से सुनता हूँ, ठीक है। लेकिन ये बताने के लिए कॉल की आज आपने पहली बार, गालबन बड़ा अच्छा लगा। अहमद भाई ढेर सारी दुआएं आपके लिए। और नदीम मंसूर भाई कहते हैं, आंटी दीबा ने हमने यखनी क्या कभी कुछ भी नहीं, लारे लगाती हैं आंटी दीबा जी। मंसूर भाई ने बताया, नदीम मंसूर ने, कि आपने उनको समोसों का लारा लगाया हुआ है, समोसों का लारा। तो मैंने कहा आपको भी उन्होंने लारा लगाया हुआ है, एक लारा उन्हें मैनू भी लाया है, एक लारा तानू भी लाया है समोसिया का। ये आंटी दीबा तुहाडे लारे ते रह गए कवारे। और आंटी दीबा ने फिर क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा बड़ी जंग चल रही है भाई साहब यहाँ पे, ये तो हम है कि अभी तक छलनी नहीं हुए हैं, आपकी दुआएं काम आ गई, कोई नेकी जो मुझे याद नहीं आ रही वो काम आ गई, यहाँ जंग चल रही है फोन पे। आंटी दीबा कहती है, काशिफ माड़े रिश्तेदार सारे सुनने, तू ही पता तू ही एक्सरसाइज करने तकने रोज। मैं कहा आंटी दीबा ये क्या बने हो, आने काशे वो तकने तू की ता आने जे जी आंटी ईयो जा अगू काशिफ आंटी ता भतीजा भांजा जो भी दो ही खोजे। मैं आंटी ता कुछ तकने मिकी हो, आने हो तू की तकने रहने मिकी रिपोर्टा देने वित बड़ा काशिफ जड़ा ना असा फलानी फलानी जगह तकिया। मैं आंटी आंदा मैं भी नजर रखसा सज्जे खब्बे अपर थला इधर उधर मैं भी ध्यान रखसा, नहीं पता ही नहीं सी ता लोक असा की तकने रहने। वो भी आंटी दीबा ने रिश्तेदार जितने तुसा सुनने पे हो ना, हुण माड़ी नजर रहसी तुसा पर, जे तुसा नहीं नजर माड़े पर रहनी।
1: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
2: From the Sky News Central 4, the Women's and Equalities Minister says tackling misogyny across society is everyone's business as a new task force is launched. It will bring together groups, experts, local leaders and ministers to look at harmful behaviour and attitudes online, at work and in communities. Russian officials say Ukrainian forces have launched more than 1,000 drones, including at targets in Moscow. The Russian capital's mayor claims the attack was planned with the aim of disrupting elections happening today. Russia's also blaming Ukraine and the UK for cyber attacks, but insists all votes will be counted. Defence Secretary Wes Streetings reiterated Britain's position.
3: This is Putin's war. It's a war of his choosing. It was unprovoked, and it is vital that the Ukrainians prevail. Because history teaches us that when tyrants go unchallenged, they come back for more.
2: Princess Diana's brother says Harry and Meghan's media treatment echoes what happened to his sister. Earl Spencer's described press coverage of the Duke and Duchess of Sussex as a cancerous influence on their life. Ed Sheeran's apologised to fans for making mistakes as he opened his first show since rapper Macklemore was dropped for making pro-Palestinian remarks on stage. The controversy prompted all of his support acts to quit the US leg of his tour. Sport and Rangers have cut the gap on Scottish Premiership leader Celtic to 2 points with a 1-0 win at their old firm rivals. It's the second derby victory in 8 days for Derek McInnes' men, who came out on top in last Sunday's League Cup quarter-final.
4: It's not easy coming here, or the circumstances you're under and what you face.

कहते हैं कि माना कि लापरवाह हैं हम, मगर आपके मामले में बिल्कुल भी नहीं। मसरूफियत कितनी भी हो, लेकिन ख्याल हमेशा आपका रहता है। किसने कहा? किसी ने तो कहा, अब हमारी बारी है ना आपको जेलस करने की। आपने कॉल्स की, आपने कहा जेलस कर रहे हैं आपको भिंडी गोश्त, कभी कुछ कभी कुछ। नहीं जनाब, जले आपके दुश्मन। हमारी दुआएं हैं आपके लिए, आप गुलो गुलजार रहे, शादो आबाद रहे, हंसते मुस्कुराते रहे, और फूल और कलियां आपको देख के रश्क करें, रश्क भरी निगाहों से आपको देखें। आप इस तरह से खिले खिले रहें अपनी सारी जिंदगी में। हलीमा, बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी प्यारी बातें। जब हम सुनते हैं तो हमारा दिल कहता है कि आखिर इरादा क्या है आपका, कहां का इरादा है। हमारे दिल में, हमारी दुआओं में आप रहते हैं। नहीं, ये हलीमा की बात नहीं कर रहा हुजूर, आपकी बात कर रहा हूं। जी जनाब, अब आपकी बात हो रही है। हमारे दिल में, हमारी दुआओं में आप रहते हैं। आपके दिल में कौन रहता है, ये कभी आपने नहीं बताया। अपना इरादा किसको बसाया है आपने, ये क्यों हमसे छुपाया है आपने। अली अराई भाई, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप रेगुलर कॉलर हैं, सब आपको पहचानते हैं, जानते हैं आपका नाम, जाना पहचाना सनराइज रेडियो, जहां जहां सुना जाता है वेस्ट यॉर्कशायर में 100.6 एफएम और 103.2 एफएम के जरिए। अली भाई, आपका क्या इरादा है? आपने हमसे हमारे इरादे पूछे, कुछ ना की हुई कसमें और कुछ निभाए हुए वादे पूछे। बहुत शुक्रिया, खैर वाफियत जानी, ढेर सारी दुआएं दी और कुछ टांग खिंचाई की आपने, और फिर आपने बताया भी कि जनाब हम आपकी टांग खींचते हैं। मैंने कहा हजूर, जब भी आते हैं एक ही टांग खींचते हैं, और वो जनाब, वो टांग जिसे आप इतने सालों से खींचते हैं, वो हमसे भी ज्यादा लंबी हो गई है। दूसरी टांग भी खींचे, बैलेंस करें ना जनाब। बहरहाल जनाब, अच्छा लगा आपसे। आप खींचे टांग जनाब, लेकिन दोनों टांगें खींचा करें, एक ही टांग खींचते हैं हर बार आके, और आप हंस रहे हैं इस वक्त, और हमने अपना हंसा रोक रखा है। बाद में हंसते हैं हम शो के बाद। और जनाब, हमारे साथ अली भाई के बाद आई मिसेज कौर। नहीं जे तुहाडे जिहा कोई होर, मिसेज कौर तुसी इन्नियां मिठियां गल्लां करदे हो कि मैनूं लगदा है मैनूं डायबिटिक हो जानी है, ते मेरी कोशिश भी होंदी है कि मैं वो की कहंदे ने पंजाबी विच, सियाने लोग कुछ कह गए ने, वो कहंदे ने कि इट दा जवाब पत्थर नाल देना पैंदा। हुण तुसी इन्नियां मिठियां गल्लां इन्ने मिठे अंदाज विच करके टुरते जांदे हो, पर सानू एक वक्त जिहा पा जांदे हो। मैं थाड़े नाल दियां किंच गल्लां बनावां, मैं सादा ते सिद्धा जलेबी अंगर, मैं किंच मिठियां गल्लां करां। हुण मैं कोशिश करदा पिया, दस्यो कॉल करके दोबारा कॉल पानी पेगी तानू। तुसी सवाल साडे कोलों पांदे हो कि किंज असी इह गल्लां बणांदे आ, इह हांडी थोड़ा है
ਇਹ ਅੰਡੇ ਦਾ ਆਮਲੇਟ ਥੋੜਾ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਤਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਂਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਚਕਾ ਥੋੜਾ ਚਾੜਨਾ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਥੋੜਾ 4 ਵਜੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਤੇ ਚੁਸਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਗੱਲ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਿਸਿਸ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਏ ਸਾਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ ਮੁਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਹਾਸਾ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਜੀ ਏ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਨਾਬ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮਿਸਿਸ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਮਿਸਿਸ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਜਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲਵੋ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ

0: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 Oak Lane, Bradford 9, टेलीफोन 01274056014. सोफी ज्वेलर्स।
0: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.

जी जनाब, अभी एक क्या कहते हैं उसको, हमारे जाने का टाइम आ रहा है और साथ में हमें एक फटीक डाली गई है। फटीक नहीं पता आपको? फौरन से पहले गूगल करें। कोई सियाना है आपके घर में, कोई बड़ा आपसे उम्र में बड़ा, उससे पूछेंगे काशिफ ने ये नई फटीक डाली है, फटीक का मतलब बताएं। तो जनाब हमें जाते जाते हम किसी और जोन में होते हैं। जाने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हजूर कुछ दोस्तों को गाने बैक टू बैक भी सुनने होते हैं। मुझे पता है, या मेरा ये अंदाजा है, या मेरा ये वहम है जिसका इलाज कोई नहीं है, या फिर ये मेरी गलत फहमी हो सकती है, लेकिन फिर ऐसी गलत फहमी तो कटनी होती है ना। इसलिए जनाब मैं लास्ट 15-20 मिनट में बैक टू बैक गाने लगाता हूँ ताकि जो गाने सुनने वाले हैं उनका भी राज्य हो जाए राज्य, और जो बातों के दिलदादा हैं मिसिस कौर की तरह, जो हमारी बातें सुनते हैं आयशा जी की तरह, जो हमारी बातें सुन के उसमें से बातें निकालते हैं, गल को बताते हैं मजीद, तो उनके लिए और माहीन कहती है उनको हमारी बात लड़ गई। वाजिबा कहती है हमने कहा कि आपको कॉल की, आपकी बातें अच्छी लगी, और साथ में हमने ऐसे ही कह दिया था कि किसी गलत फहमी में ना रहना, और आप बहुत हंस रही थी, और आपने कहा कि जिस तरह से आपने बारी मुकाई है ये कह के कि ये गाना मैं लगा रहा हूँ आपके लिए, सानू तेरे नाल प्यार हो गया। ब्रारो लख जी का गाना लगाया था, मुझे तो याद भी नहीं था कौन सा गाना लगाया। आप इतने गौर से हमारी बातें सुनती है माइन जी, अब तो मुझे डर लग गया है, बोलते हुए भी डर डर के बोल रहा हूँ, सहम सहम के बोल रहा हूँ, मेरी तो टांगे भी कांप रही हैं। मैंने तो अपनी जैकेट उतार के अपनी टांगे अपनी कुर्सी के साथ बांधी हुई हैं, इन्नी कप कपी मेरी टांगों में, ये सोच के डर के मारे कि आप इतनी गौर से मेरी बातें सुनते हैं। खैर आपने कहा जनाब, हंसते हंसते आपने कहा अब टाल भी नहीं सकता मैं, बिकॉज आई एम अ जेंटलमैन, लेडीज फर्स्ट होता है जनाब। हमने कहा जूर अगले हफ्ते पे टाल नहीं है फरमाइश, नेक्स्ट वीक लगा देंगे। कहती है नहीं, आपने वारी मुकाई है, गलत फहमी हमने बोला, फिर आपने भी हमें बोला, अब हमने ये गाना लगाना है और आपने सुनना है। चलो जी बाकी सारे भावे एक एक कान बंद कर लो, एक एक कान तुसी खुला रहन दियो, ते मैं अपने जनाब दोए कान खोल लेने। माइन जी ये गाना मैं बिल्कुल गौर से सुनूंगा अगर मेरे साथ कोई कॉल्स मजीद मुझे टाइम मिला तो। बहुत शुक्रिया जनाब, आपकी अच्छी चॉइस है, लेकिन अच्छा ये होगा कि गाना मैं भी सुनता हूँ, गाने आप भी लगाएं, हम दोनों ही गलत फहमी में ना रहे हैं ना, इसका हल यही निकला है।

0: Thank you for making Sunrise Radio your favourite Asian radio station.
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: Move for 10 आ गया है. This Girl Can का नया चैलेंज जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है. बस 10 मिनट मूव करे महीने में 10 दफा. मुझे अब ज्यादा एनर्जी फील होती है और कॉन्फिडेंस भी. अब मेरी नींद भी पहले से बेहतर है. सुबह की हल्की सी स्ट्रेचिंग हो या पार्क में तेज वॉक, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रिक्ट स्केड्यूल नहीं. जब आपके लिए ठीक हो बस मूव करें. मैं पहले ही 3 सेशंस कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ. पूरे मुल्क की ख्वातीन इस महीने 10 मिनट 10 दफा मूव कर रही हैं. आप भी ज्वाइन करें. सर्च करें दिस गर्ल कैन मूव फॉर 10.
0: सनराइज रेडियो, ट्रेंड सेटर्स इन एशियन ब्रॉडकास्टिंग. वी लीड, अदर्स फॉलो.

जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आंटी दीवा आपका। और आंटी दीवा, आपका खलूस है, प्यार है, बातें बहुत सारी आपकी होती हैं, लेकिन जनाब ये गीत आपके लिए, आपकी पोती उम्मे खानी के लिए भी और बाकी आप सब सुनने वालों के लिए भी। जुदाई की घड़ियां और हमारे जज्बात इस गीत में आपके लिए। सुनिएगा, महसूस कीजिएगा।

अलावा मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। बिछड़ने के बाद ही एहसास होता है कि आपके लिए कोई कितना खास था, या फिर आपको एहसास होता है कि आपके लिए कोई कितना अहम था। प्यार कहते हैं जुदाई ना पड़े, तो प्यार कितना गहरा है किसी के साथ आपका ये एहसास नहीं होता। उसका अंदाजा लगाने के लिए किसी से आपके प्यार का, जुदाई की तलवार पे नंगे पांव चलना पड़ता है। ये मुझे नहीं पता, ये हमने बस ऐसे ही कहीं सुना, कहीं पढ़ा, कहीं देखा, हमें क्या पता। बहरहाल जनाब, बहुत शुक्रिया सभी दोस्तों का हमेशा की तरह आखिर में जाते हुए। बिल्कुल जनाब, बैक टू बैक गीत सुनेंगे, फ्लैशबैक में क्लासिक टफ दावर भी सुनेंगे और चंद एक गीत भी बैक टू बैक सुनेंगे उनके लिए जिनका शिकवा कभी रह ना जाए कि हमें गाने कम सुनने को मिले। तो इसलिए कोशिश करता हूँ आखिर में 15-20 मिनट आप दोस्तों के लिए जो गीतों के लिए ट्यून इन करते हैं सनराइज रेडियो, और जिन्होंने बातों का इंतजार किया और इंतजार के बाद सुना और सुनने के बाद साथ दिया कॉल्स करके, आपके लिए क्या कहूं। शुक्रिया का लफ्ज छोटा पड़ जाता है ऐसे मौके पे। तो जनाब, जानने से पहले हमेशा की तरह एक बात कहता हूं कि हर किसी की इज्जत करें सिर्फ एक इंसान समझ के। सबसे पहले रिस्पेक्ट एवरीबॉडी विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ कास्ट कलर एंड रिलीजन, जात पात रंग नस्ल मजहब के फर्क के बगैर सबकी इज्जत करें एक इंसान समझ के। फिर देखिएगा लोग आपकी भी इज्जत करेंगे सबसे पहले आपको एक इंसान समझ के। कोशिश कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी की आंख में आंसू ना आए, किसी का दिल ना टूटे, किसी का दिल ना दुखे, किसी की जिंदगी में मुश्किलात ना खड़ी हो या कोई मुश्किल ना खड़ी हो आपकी वजह से, और उसके दिल से हाय निकले जो अर्श तक जाए उसके रब तक। कोशिश अगर करनी हो तो जरूर कीजिएगा मेरी तरह। दूसरों की जिंदगी में आसानियां बांटने की, दूसरों की जिंदगी में आसानियों का वसीला बनने की, आसानियां पैदा करने की वजह बनने की कोशिश कीजिएगा रब की मखलूक की जिंदगी में। अगर आप, जी हां, रब की बनाई हुई मखलूक और वो भी अशरफुल मखलूकात में से इंसान, अगर उसकी जिंदगी में या किसी बेजबान की जिंदगी में, कोई जानवर चरिंद परिंद किसी की जिंदगी में भी अगर आप आसानी पैदा करने की कोशिश करेंगे तो उसका बनाने वाला रब है। उस रब ने तखलीक किया है सबको, वो खालक। याद रखिएगा, फिर आपकी जिंदगियों में आसानियां पैदा करने के मौजज़े वो पैदा करेगा। आपको मौजज़े देखने को मिलेंगे आसानियों के अपनी जिंदगियों में, याद रखिएगा। अभी तक के लिए जनाब इतना ही, और घड़ी आन पहुंची जो दाइयों की वछोड़ों की, आपसे दूर जाके आपके पास आपके दिल में रहने की घड़ी आन पहुंची। अपनी यादों में, बातों में, अपनी चाहतों में, और सबसे बढ़ के, जी हां जनाब, सबसे बढ़ के अपनी दुआओं में मुझे काशिफ को जरूर याद रखिएगा। अगली मुलाकात बशर्ते जिंदगानी, बशर्ते सेहत, आपके साथ एक बार फिर होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए अपना बड़ा खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। हाय, आपका और मेरा, मेरा और आपका, जाऊं चले, आप कहते हैं तो जाता हूं।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Once upon a time in La La Land, सुनो सुनो, हम थे 30 मरहान।

0: नफसेन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30, दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, Milton Keynes, and West London, with even more areas coming soon. Call 01274 735043 or email sales@sunriseradio.fm.
3: Experience something truly spectacular as the internationally renowned Flower Carpet comes to the UK for the very first time. From Thursday the 24th to Sunday the 27th of September, Centenary Square in Bradford will be transformed by over 300,000 colourful flowers. Visit for free during the day or see the carpet illuminated with a stunning sound and light show each evening from 7:30. Don't miss this once-in-a-lifetime event. Event produced by Bradford Culture Company.

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: जेवर देखा था, इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
2: Free courses at Shipley College. Free teaching assistant courses, free health and social care courses, free childcare courses, free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.

0: experience something truly spectacular as the internationally renowned Flower Carpet comes to the UK for the very first time. From Thursday the 24th to Sunday the 27th of September, Centenary Square in Bradford will be transformed by over 300,000 colourful flowers. Visit for free during the day or see the carpet illuminated with a stunning sound and light show each evening from 7:30. Don't miss this once-in-a-lifetime event. Event produced by Bradford Culture Company.
1: गलियां गलियां घूमी ते पैरां दी जुत्तियां भी कसी गईं पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
2: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
1: चाचा केड़ा चाचा?
2: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्नाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
1: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
2: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935

0: experience something truly spectacular as the internationally renowned Flower Carpet comes to the UK for the very first time. From Thursday the 24th to Sunday the 27th of September, Centenary Square in Bradford will be transformed by over 300,000 colourful flowers. Visit for free during the day or see the carpet illuminated with a stunning sound and light show each evening from 7:30. Don't miss this once-in-a-lifetime event. Event produced by Bradford Culture Company.
1: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाया रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 012-74-735-043 पर कॉल करें

0: right now, live on the decks, bringing you the hottest sounds. Let's go
1: on Sunrise Radio.
2: Ladies and gentlemen, party people in the place to be, all you listeners.
3: Salam and namaste. Salam and namaste.
4: जिससे दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा, हुए
5: आमिर खान।
6: हम शरीफ क्या हुए?
7: मैं वापस
6: पूरी दुनिया ही बदमाश।
7: देखो मैं हूँ कहाँ।
5: आमिर खान
7: आ रहा हूँ पलट के, मैं हूँ

0: अस्सलाम वालेकुम नमस्ते शिका खुश आमदीद वेलकम टू सनराइज रेडियो 103.2 एफएम 100.6 एफएम अक्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर आपका होस्ट दोस्त यहां पे हाजिर है मेरा नाम परवेज आम हियर Till 11 o'clock, beautiful sham, or aap sabke naam Runge Mehfil ka program hai 01274306766. And today is amazing day, as you know. Today is Sunday evening. Good evening to you all. Today 20th of the 9th, 2026. The weather has been such a lovely, romantic mushroom. Kahan pe ja rahe hain? Kahan pe aa rahe hain? What is your beautiful plan for this beautiful evening? And good evening to you all. And you're definitely listening to Sunrise Radio on www.sunriseradio.fm और यहाँ भी हमने पेश करना है हिट ऑफ द आवर आई होप यू कैन एंजॉय दिस वंडरफुल वंडरफुल ट्यून फॉर एवरीबॉडी लॉक्ड विद द स्टेशन ट्यूनिंग विद द स्टेशन एंड नो फॉरगेटिंग ऑन डीएबी प्लस और ये गीत आप सब दोस्तों के लिए का हिट ऑफ द आवर एंजॉय
1: सनराइज रेडियो Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. A Sunrise Radio hit of the hour.

0: Right, that was the hitter of the hour. आपने enjoy किया, बहुत बहुत शुक्रिया. लानी यहाँ पे चमक रही है, दमक रही है और यहाँ पे रौनक आ रही है और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी. लानी काफी बिजी है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और यहाँ पे हमने करना है टाइम चेक, विच इज वेरी वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Right time in the studio is 13 minutes past 8 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night. Wherever you are, keep a lockdown with the power of his gun. Aur yahan pe choti si nanni munni ki break hogi. Break ke foran baad we will mention all your names, jo khoobsurat naam likhe aa rahe hain aur apni apni haazri laga rahe hain aur bahut bahut bahut shukriya aap sab ka bhi. Aur yahan pe choti si nanni munni ki break hogi. Keep it locked.
2: Sunrise Radio.
3: Free courses at Shipley College. Free teaching assistant courses. Free health and social care courses. Free childcare courses. Free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.
0: Right, welcome back, listeners. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और हमारा साथ देने अतिका साहब हैं ऑल द वे फ्राम मैनचेस्टर. वेलकम जी एन खुश आमदीद. देन वी हैड अ लवली लवली कॉलर फ्राम हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त वाजिद भाई, वन एंड ओनली वन वाजिद भाई. और आपका प्यार, मोहब्बत, खलूस, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा साथ दे रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है. और हमारी दुआ भी आपके साथ है. राजा शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारा साथ दे रहे हैं. यू फ्लश इन इन और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है. और जब भी आप मुझे दोबारा फ़ोन करेंगे, आपकी लाइन मिस हो चुकी है और आपने मिस कॉल दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. वी हैड अ लवली कॉलर फ्रॉम मिल्टन कीन्स से, हमारे गिदन भाई हैं, हमारे पापी जान स्मित से गुफ्तगू हुई है. बड़ा ही प्यार के साथ, बड़ी खूबसूरत आवाज़ की इनकी मालिक हैं और आज भी धमाका होगा और खूबसूरत धमाका होगा. नशीन साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. सिमी जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. डॉक्टर ईमान, और आपको हमारी तरफ से मुबारकां, ढेर सी मुबारकां आपको और शादी की मुबारकां पेश कर रहा हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी हमें याद कर रहे हैं. और हमारे साथ दे रहे हैं हमारे चौधरी फरियाज साहब, हमारे लाडले आ गए, हमारे उस्तादों के उस्ताद आ गए. आने वाला गीत मैं आपके लिए पेश करूंगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे और सबके लिए फर्दन फर्दन गीत होंगे. और जो आप मुझे फ्लश कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और आने वाला गीत मैं आपके लिए पेश करूंगा. और फिलहाल ये गीत मैं आप सब दोस्तों के लिए, जिंदगी खूबसूरत है और वाकई खूबसूरत है और इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू. वाकई जिंदगी खूबसूरत एंड एवरीबॉडी खूबसूरत है. सब दोस्त अहबाब अजीज है हमारे जो चाहने वाले हैं, सब खूबसूरत है. और व्हाट अ ब्यूटीफुल कंपनी यू हैव गिवन टू मी एंड थैंक यू. और ये वो गीत है जो मैं पेश करने जा रहा हूं. एंजॉय दिस वंडरफुल ट्यून. एंजॉय.

नो डाउट इज़ ज़िंदगी खूबसूरत है, इट ऑल डिपेंड ऑन यू। और बहुत अच्छा लगा चौधरी फिराज साहब के बात हुई है, गुफ्तगू हुई है और उन्होंने सबको सलाम पेश किया है। और आने वाला गीत मैं आपके लिए पेश करूंगा। और हमारे मीठा जी हैं, मीठा जी बहुत बहुत शुक्रिया। रुखसार भाई आज आपने एक हमें फ्लश किया है, आप पता लगा आप बिजी हैं माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमें अच्छा लग रहा है आप भी हमारा साथ देने, बहुत बहुत शुक्रिया। और आने वाला गीत मैं पेश करने जा रहा हूँ आपके लिए होगा और आपके दोस्तों के नाम का, मुझे उम्मीद और यकीन है इस गीत को आप इंजॉय करेंगे और बहुत ही खूबसूरत गीत है। और बड़े दिनों के बाद ये मैं गाना पेश कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे। और शिवे भाई ये आपके लिए होगा और आपकी पूरी टीम के लिए और स्पेशली हमारे चौधरी फ्रियाज साहब आपके लिए भी होगा। और गिदन भाई और सुमित्रा जी हमारे पापी जान है ऑल द वे मिल्टन कीन्स से, ये गीत मैं आपके लिए पेश करना चाहें, मुझे उम्मीद है यकीन कि इस गीत को आप इंजॉय करेंगे। और यही गीत मैं पेश करूँगा। सिमी जी हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप ही हमारा साथ दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लवली लवली फोन कॉल और ये खूबसूरत गीत आपके लिए। इफ़ यू आर ड्राइविंग एंड ड्राइव विद द कैर and if you're out and about, make sure you stick around with the Sunday Radio on 100.6 FM, 103.2 FM, and not forgetting, you can hear DAB Plus on Bradford, Keighley, Ilkley, and Skipton. और ये खूबसूरती है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारा साथ दे रहे हैं और all those lovely, lovely callers. और यहाँ भी हमने ये गीत पेश करना है, मुझे उम्मीद और यकीन है कि इस गीत को enjoy करेंगे। जो भी दहल नंबर है और मुझे फ़ोन करने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप आए और बाहर आ गए। और ये वो गीत है, एंजॉय द ट्रैक।

0: That was a wonderful tune और आपने enjoy किया. Dr. Malhotra, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने हमें याद किया all the way from Manchester और हमें अच्छा लगा आप हमारा साथ दे रहे हैं. और यहाँ पर हमने छोटी सी ब्रेक करेंगे और ब्रेक के फौरन बाद I will play for you amazing track जो आने वाला गीत होगा वो गीत आने वाला है नदीम मंसूर आपके लिए अतीका साहब आपके लिए होगा और हमारे मोहतरम भाई हैं दोस्त हैं और ईमान डॉक्टर ईमान आपके लिए होगा. मुझे उम्मीद है यकीन है कि गीत को हम इंजॉय करेंगे थोड़ी देर के बाद वो गाना में पेश करने जाना और सब सुनने वालों के लिए होगा. और वाजिद भाई मैं भूला नहीं हूँ आपको गाना में सुनाऊँगा थोड़ी देर के बाद. बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी हमारा साथ दे रहे हैं और जो काम करें आपने दिल लगा के काम करना है हरकत नल बरकत होनी है. और शुएब भाई राजा शुएब भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आपने भी दिल लगा के काम करना है. और वीकेंड है इस संडे इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू ऑल. और यहाँ पे हमने छोटे से ब्रेक करेंगे कीप इट लॉक्ड.
1: Experience something truly spectacular as the internationally renowned flower carpet comes to the UK for the very first time. From Thursday the 24th to Sunday the 27th of September, Centenary Square in Bradford will be transformed by over 300,000 colourful flowers. Visit for free during the day or see the carpet illuminated with a stunning sound and light show each evening from 7:30. Don't miss this once-in-a-lifetime event. Event produced by Bradford Culture Company.
2: Looking for a quality home to rent.
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
0: और ये गीत मैं पेश करना चाहता हूँ अब्दुल कयूम साहब फ्राइजिंग और से आपके लिए होगा. और जो मैं आपके घर में मेहमान हैं और जो हमारे इलाके के हैं डडियाल के रहने वाले हैं सोने तो मनमोहन की हाल चाल है ठीक है से ठीक है ना. और खूबसूरत शहर है माशाल्लाह खूबसूरत लोग हैं माशाल्लाह वहाँ पर डडियाल के और क्या कहेंगे जितनी भी तारीफ करूँ कम है. और इसमें कोई शक नहीं है और डडियाल ये गाना आपके लिए पेश करना चाहिए. मुझे उम्मीद है यकीन है कि आप इस गीत को इंजॉय करेंगे. अब्दुल कयूम साहब ये गीत आपके लिए भी होगा आप ही इंजॉय करें. और बहुत ही अच्छा लगा कि आपने हमें याद किया बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी.

ही पड़ा ये माना मेरी जान, मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान।

Right, that was a vocal by Muhammad Rafi साहब. क्या खूबसूरत इनकी आवाज़ थी और क्या आवाज़ इन्होंने पाई है और गाना भी बहुत ही खूबसूरत था. और यहाँ पर मैंने सब कुछ यहाँ पर स्टॉप करना है क्योंकि मैंने यहाँ पर अजान पेश करनी है और यहाँ पर सिस्टम में शो नहीं हो रही है ईशा की अजान ब्रैडफोर्ड में यॉर्कशायर में. और अपनी अपनी मकामी टाइम टेबल को देख के सुन के आपने नमाज अदा करेंगे. मेरे लिए मेरी फैमिली के लिए दुआ करनी है, खासकर जो हमारे बीमार हैं और स्पेशली जो हमारे भाई हैं उनके लिए दुआ करनी है. चौधरी रुखसार भाई हैं उनके लिए खुशी से दुआ करनी है और हमारे चौधरी फरियाज साहब हैं उनके लिए दुआ करनी है. हमारे वाजिद भाई हैं उनके खुशी से दुआ करनी है और सबके लिए दुआ करने. और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप उनके लिए दुआ करें, हमारे लिए दुआ करेंगे तो हमें अच्छा लग रहा है. और यहाँ पर हमने अजान पेश करनी है, वो भी ईशा की अजान ब्रैडफोर्ड में यॉर्कशायर में. कीप इट लॉक्ड विद सनराइज़ रेडियो 103.2 and 100.6 FM. Not forgetting DAB Cross of West Yorkshire.

अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Sunrise Radio. Your soundtrack, your time check.
1: Right, ladies and gentlemen, boys and girls, according to Sunday clock, it's 43 minutes past 8 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked in, keep it locked down with the Parviz Khan. I'm going to be playing for you a flashback on where were you when you hear that beautiful tracker. It's going to be something unique, something different, and I'm going to be playing for the tracker. Sunny all the way from Birmingham, Aapke Liye Bhi Hoga, or Rekha Ji, Aapke Liye भी और नशीन साहब आपके लिए, तिकर साहब आपके लिए, सिमी जी आपके लिए भी, और हमारे मोहतरम हैं, हमारी पापी जान हैं, सुमित्रा जी हैं, उनके लिए भी गीत होगा, और सतारा जी आपके लिए भी होगा। मुझे उम्मीद और यकीन कि इस गीत को आप इंजॉय करेंगे, और हमारे मोहतरम रुखसार भाई आपके लिए भी गीत होगा, और आपने कहीं पर जाना नहीं है, ये गीत आपके लिए। नदीम मंसूर साहब आपके लिए भी होगा। आई होप यू कैन एंजॉय दिस वंडरफुल ट्यून। कीप इट लॉक्ड विद द सनराइज रेडियो 103.2 FM।

0: राइट और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं और अतिका साहब हैं ऑल द वे फ्रॉम मैनचेस्टर हैं, वेलकम कहेंगे, जियन कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, साथ बिस्मिल्लाह कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: और यहाँ आपके लिए और आपकी कैसी तबीयत, ठीक ठाक से ठीक है आपकी?
1: अल्हम्दुलिल्लाह सब आपकी दुआएं हैं।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह,
1: तो अल्लाह पाक का शुक्र है।
0: अल्हम्दुलिल्लाह
1: ठीक है
0: जी,
1: आप कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह पाक का शुक्र, करम करम उस मौला का करम है,
1: अल्लाह पाक हमेशा करम रखे।
0: और
1: ये जो आपने नगमों की नगमे लगाए हैं इस पे भी बड़ा करम
0: करम करम, ये जो बारिश हुई है रंगमों की खूबसूरत बारिश हुई है और क्या कहने,
1: खूबसूरत महफिल सजा रखी है आपने
0: जी,
1: खूबसूरत नगमों के साथ हमेशा की तरह
0: जी,
1: बहुत ही खूबसूरत नगमे लगाए
0: आपने,
1: तो बहुत अच्छा लगा। और जब ये आता है वेनसडे और संडे
0: जी,
1: तो उस दिन तो लगता है जैसे कोई ईद का समा होता है।
0: आहा, क्या कहें,
1: खूबसूरत महफिल सजती है, खूबसूरत लोग आते हैं, खूबसूरत सितारे चमकते हैं और फिर उसमें चांद चमकता है।
0: वाह
1: बहुत ही खूबसूरत लगता है, अल्लाह पाक हमेशा ऐसे ही रखे,
0: आमीन।
1: शुरू करते हैं अब
0: जी, जी।
1: आगाज करते हैं हम
0: जी
1: अपनी सखी सहेलियों से, रंगे महफिल की जो सब जान है, सुमित्रा जी और गीदर भाई, सबसे पहले तो
0: जी
1: उनको नमस्ते। वो लास्ट टाइम बहुत ही खूबसूरत उन्होंने हमेशा की तरह नगमे सुनाए, बहुत खूबसूरत लगा। और उनकी जो आते हैं महफिल सजती है तो वो धमाका ही करते हैं, और
0: धमाका ही करते हैं, क्या कहने उनके जी।
1: तो इंशाल्लाह, तो उनका मैसेज का भी बहुत शुक्रिया। तो रेखा जी हैं, अपनी नशीन जी हैं, शाहपुरी हैं, जुलेखा जी हैं, सलीना जी हैं, सितारा जी हैं, आसिया जी हैं, रुखसाना अफजल हैं। और सलीना जी ये तो मेरे हार है, काफ़ी अच्छा हो गया गायब, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे और वो भी आए। तो चौधरी फरियाज साहब हैं, वो भी गायब हैं,
0: उन्होंने फोन किया था और माशाल्लाह उन्होंने आपके सबके लिए सलाम पेश किया, गाना भी सुनाया उन्होंने, और वो कह रहे हैं जी जी उन्होंने आज फ़ोन किया है और बड़ी खुशी के साथ, और कहते हैं कि मैं बीमार हूँ फिर भी मैं कोशिश करूँगा फ़ोन करने की, और बड़ा अच्छा लगा उनसे अच्छी गुफ्तगू हुई है जी।
1: चले ये तो अच्छी बात है कि पता चल गया वो उनकी अल्लाह पाक और तबीयत अच्छी करे और आए और खूबसूरत अपनी शायरी सुनाए। तो जवेद मीर साहब हैं, नदीम मंसूर साहब हैं, उनकी खूबसूरत आवाज भी सुनने को आज मिलेगी
0: जी जी।
1: पापा जी हैं, शकील साहब हैं, सलीम भाई हैं, अब्दुल कयूम साहब हैं, सजाद साहब हैं, वाजिद भाई हैं, साजिद भाई हैं, और एफ ए रहमान साहब हैं, महबूब इलाही साहब हैं, उनको बहुत बहुत सलाम। उनकी जो लास्ट टाइम सॉन्ग सुनाया था बहुत खूबसूरत सॉन्ग था, उम्मीद है कि वो आज भी कोई सॉन्ग सुनाएंगे। राना नवीद साहब हैं, तारिक भट्ट साहब हैं, शुक्रान भाई हैं, एहसान भाई हैं, चौधरी रुखसार साहब हैं, आसिफ रियासत साहब हैं, राव अजहर हुसैन साहब हैं, सबको बहुत बहुत सलाम।
0: वालेकुम सलाम।
1: तो सबके लिए शायरी है थोड़ी, सबकी नज़र करेंगे
0: जी जी।
1: तो ये जो कुछ इशार हैं ये मेरे बहुत ही पसंदीदा इशार हैं
0: जी। इरशाद,
1: तो सबसे पहले इन्हीं से आगाज करते हैं
0: जी।
1: उतरते हुए ख्वाबों की बरसात में अक्सर, भीगते हैं तेरी यादों की बरसात में अक्सर।
0: बहुत खूब।
1: उतरते हुए ख्वाबों की बरसात में अक्सर, भीगते हैं तेरी यादों की बरसात में अक्सर। बहारों की हवाओं में सरशार से उड़ते, झूमते हैं तेरे प्यार की बरसात में अक्सर। बहारों की हवाओं में सरशार से उड़ते, झूमते हैं तेरे प्यार की बरसात में अक्सर।
0: बहुत खूब।
1: ख्वाबों के दरीचों में बहारों का समा है, मिलते हैं हम जहां चांदनी रात में अक्सर। ख्वाबों के दरीचों में बहारों का समा है, मिलते हैं हम जहां चांदनी रात में अक्सर। सरे शाम ही फैली है तेरे बदन की खुशबू, महकते हैं जज्बात भीगी रात में अक्सर। उठते हुए ख्वाबों की बरसात में अक्सर, भीगते हैं तेरी याद की बरसात में अक्सर। वो मुझको दस्तयाब बड़ी देर तक रहा, मैं इसका इंतहा बड़ी देर तक रहा। वो मुझको दस्तयाब बड़ी देर तक रहा, मैं उसका इंतहा बड़ी देर तक रहा।
0: बहुत खूब।
1: देखा था उसने मुड़ के मुझे एक नजर, तो फिर आंखों में अस्तरा बड़ी देर तक रहा। खुशबू भी कैद हो गई लफ्जों के जाल में, खुशबू भी कैद हो गई लफ्जों के जाल में, खत में वो एक गुलाब बड़ी देर तक रहा। चेहरे में फैलने लगी ताबीर की थकन, पलकों पे एक ख्वाब बड़ी देर तक रहा। पहले पहल तो इश्क के आदाब ये भी थे, मैं आप वो जनाब बड़ी देर तक रहा। पहले पहल तो इश्क के आदाब ये भी थे, मैं आप वो जनाब बड़ी देर तक रहा।
0: बहुत खूब।
1: बारिश की तरह मुझ पे बरसता रहा वो शख्स, बारिश की तरह मुझ पे बरसता रहा वो शख्स, बनकर वो एक सहाब बड़ी देर तक रहा। फिर सुबह तक ही छत पे सितारे मुकीम थे,
0: वाह।
1: फिर सुबह तक ही छत पे सितारे मुकीम थे, खिड़की में महताब बड़ी देर तक रहा। इसके सवाल पर सभी अल्फाज मर गए, अशकों में फिर जवाब बड़ी देर तक रहा।
0: वाह।
1: गिन गिन के मुझ पर कितने वो एहसान कर गया, गिन गिन के मुझ पे कितने वो एहसान कर गया, पोरों पे फिर हिसाब बड़ी देर तक रहा। वो मुझको दस्तयाब बड़ी देर तक रहा, मैं इसका इंतहा बड़ी देर तक रहा। खींच कर रात की दीवार पे मारे हुए, खींच कर रात की दीवार पे मारे होते, मेरे हाथों में अगर चांद सितारे होते।
0: वाह जी वाह, क्या कहने।
1: हमने एक दूजे को खुद हार दिया, दुख है यही, काश हम दुनिया से लड़ते हुए हारे होते। इतनी हैरत थी तुम में मुझ पे नहीं हुई थी अगर, तुमने कुछ रोज मेरी तरह गुजारे होते। इतनी हैरत तुम्हें मुझ पर नहीं हुई होती अगर, तुमने कुछ रोज मेरी तरह गुजारे होते। यार क्या जंग थी जो हार के तुम कहते हो, जीत जाते तो खसारे ही खसारे होते।
0: बहुत खूब।
1: ये जो आंसू हैं मेरी पलकों पे पानी जैसे, ये जो आंसू हैं मेरी पलकों पे पानी जैसे, इसकी आंखों से उबड़ते तो सितारे होते। तुमको इनकार की खूं मार गई है वाहिद, हर बवर से ना उलझते तो किनारे होते।
0: वाह।
1: ये जो हम लोग हैं एहसास में जलते हुए लोग,
0: बहुत खूब।
1: ये जो हम लोग हैं एहसास में जलते हुए लोग, हम जमीन जाद ना होते तो सितारे होते। खींच कर रात की दीवार पर मारे होते, मेरी हाथों में अगर चांद सितारे होते।
0: वाह जी वाह, क्या कहने।
1: क्यों ना तेरी सुबह की मैं शाम हो जाऊं, क्यों ना तेरी सुबह की मैं शाम हो जाऊं, जो मिले थकन के बाद वो आराम हो जाऊं। अगर तेरी आवाज ही मेरी रूह को चैन बख्शे, अगर तेरी आवाज ही मेरी रूह को चैन बख्शे, तू क्यों ना तुझसे हम कलाम हो जाऊं। चाहे जितनी भी कदर करे ये दुनिया मेरी, सिर्फ एक तेरे लिए मैं आम हो जाऊं। चाहे जितनी भी कदर करे ये दुनिया मेरी, सिर्फ एक तेरे लिए मैं आम हो जाऊं। जब हो ही गया इश्क में मुब्तला तुमसे, तो क्यों ना तेरे ही लिए तमाम हो जाऊं। तेरा तो ना इनकार ना इजहार पहुंचा मुझ तक, तेरा तो ना इनकार ना इजहार पहुंचा मुझ तक, क्यों फिर मैं हर शाम गम का जाम हो जाऊं। शम्स तो ये चाहता है कि कुछ ऐसा हो,
0: बहुत खूब,
1: जो तू कभी ना भूले मैं वो नाम हो जाऊं।
0: वाह।
1: खैर गर महबूब हो तुझसा मुयस्सर मुझे, खैर गर महबूब हो तुझसा मुयस्सर मुझे, तो काश तेरे इश्क में मैं नीलाम हो जाऊं। क्यों ना तेरी सुबह की मैं शाम हो जाऊं, जो मिले थकन के बाद वो आराम हो जाऊं।
0: क्या कहने, बहुत खूब।
1: अब नींद भी तो गनीमत ठहरी, रात भर दिल पर क्या अजियत ठहरी, अब नींद में तो गनीमत ठहरी, रात भर दिल पे क्या अजियत ठहरी, एक खुशबू सी तेरी याद आई, घर में अजब वहशत ठहरी, वो जो एक लम्हा मेरे पास रहा, उम्र भर की वही कुर्बत ठहरी, मैंने चाहा था तुझे भूल जाना, दिल की आदत मगर आदत ठहरी, तेरे जाने से खिला मुझ पे ये राज, तेरे जाने के बाद खुला मुझ पे ये राज, तन्हाई भी कोई नेमत ठहरी, चांद निकला तो तेरी याद आई, चांद निकला तो तेरी याद आई, रात भर आंख में हैरत ठहरी, बात कहने को बहुत कुछ था मगर लब पे खामोश की खामोशी सी शिकायत ठहरी, वो मिला भी तो अजनबी सा लगा, वो मिला भी तो अजनबी सा लगा, जिससे हर बात में मोहब्बत ठहरी,
0: बहुत खूब,
1: हमने हर जख्म को हंस कर सहा, हमने हर जख्म को हंस कर सहा, दर्द सहने में भी महारत ठहरी, इस दिल को क्या अजब कहिए, इस दिल को क्या अजब कहिए, जिसकी किस्मत में फकत हसरत ठहरी, अब नींद भी तो गनीमत ठहरी, रात भर दिल पे क्या जियत ठहरी। बहुत शुक्रिया,
0: कमाल का दी, बहुत खूबसूरत शायरी आपने किया और बड़ी खूबसूरत अंदाज आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें, बहुत बहुत शुक्रिया,
1: शुक्रिया आपने इतना टाइम दिया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और ये थी अतीका साहिबा ऑल द वे फ्राम मैनचेस्टर से, हमारा उन्होंने साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त, जितनी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। और चौधरी फरियाज साहब, आपकी लाइन ड्रॉप हो चुकी है, आप मुझे दोबारा फ़ोन करेंगे, आपको मैंने होल्ड किया, आप मेरे ख्याल में चले गए। और यहाँ भी हमारा साथ है नदीम मंसूर साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
2: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि
0: वबरकातुहू। सर जी क्या हाल चाल है, ठीक ठाक से, ठीक है आपकी?
2: जी अल्हम्दुलिल्लाह,
0: अल्लाह पाक का शुक्र, करम करम और गरम, और हमें खुशी हुई है कि आपने हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और हमारी तरफ से ये आपके लिए। जी हजूर, क्या लेके आए हमारे लिए
2: आज? हम आपके लिए एक चीज हट के लेके आए।
0: हाय हाय हाय, क्या कहने, क्या कहने,
2: वो ये है कि एक पानी री टंकी।
0: ओए होए होए, क्या कहने,
2: ये बहुत अरसा पहले सुना था, मैंने कहा चले ये आपके लिए।
0: बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया सर, न्याय जी।
2: ये जो माइये हैं वो उस टाइप के हैं।
0: हाँ, माइये की टाइप के हैं, और अच्छा लगा कि आपने माइये सुना रहे हैं, और बड़े दिनों के बाद हम आपकी आवाज़ में सुनेंगे, क्योंकि आजकल सुनने को बहुत कम मिलते हैं, वैसे तो गाना गुनगुनाते रहते हैं आप, तो माइये जो होते हैं ना, वो खूबसूरती है उनकी भी, और बड़ा ही प्यारा अंदाज है, बड़ा ही खूबसूरत अंदाज है जी।
2: ऐसा ही है, ये आपकी नज़र, आपकी नज़र, जो आ चुके हैं उनको भी सलाम, और जो आने वाले हैं उनको भी सलाम।
0: हाय हाय, क्या कहने, वालेकुम सलाम।
2: पानी री

0: वाह वाह वाह नदीम, ये थोड़ा जहा हट के गीत है और सराइकी में था गीत, और क्या गीत आपने गुनगुनाया, और ये मैया था वाकई, और मैया और एक खूबसूरत मैया, क्या कहने जी, वाह वाह वाह वाह, मज़ा आ गया जी, मज़ा आ गया। ये जो मैया है बड़ा ही कामयाब और बड़ा ही खूबसूरत मैया है, और ये सराइकी में है, और ये गाना भी है, और बड़ा ही खूबसूरत आपका अंदाज है, बड़ा ही अच्छा लगा, और थोड़ा जहा हट के था और बड़ा ही खूबसूरत, और इसमें सब कुछ आ रहा है, पानी भी आ गया, चाय भी आ गई है, घर वाले भी आ गए, सब कुछ आ गया इसमें, सब कुछ आ गया। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का, आपने हमें टाइम दिया वक्त दिया, और कोशिश करेंगे जो नेक्स्ट आवर में भी आप एक बॉलीवुड का गाना सुनेंगे, आपको टाइम हुआ था, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का, आप आए और बाहर आ गए, मजा आ गया मेरे भाई, और कहते हैं पंजाबी में चश आ गई जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे हमारे नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए बाहर आ गए, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह खैर। हमने क्या करने के, छोटी सी ब्रेक करेंगे, और ब्रेक के फौरन बाद यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इन सब का भी, और हमें अच्छा लग रहा है कि आप ये हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे छोटी सी नन्नी मनी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फौरन बाद यहाँ पे क्या कहते हैं कि धमाका होगा, और डेफिनेटली धमाका होगा, क्योंकि यहाँ पे एक से बढ़कर एक कॉलर आ रहे हैं, खूबसूरत कॉलर आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी, कीप इट लॉक्ड विद सनराइज रेडियो।
1: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है, शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
3: Looking for a quality home to rent?
4: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
3: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744462 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust. Sunrise
0: Music. Right, welcome back. Listening, you're listening to Radio 103.2 FM or 100.6 FM across Yorkshire or West Yorkshire. और क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त गिदन भाई हैं, ऑल द वे फ्रॉम मिल्टन किन्स हैं, और हम उनके प्यार के साथ कहते हैं गुरु जी, और उनके साथ हमारी भाभी जान हैं और सुमित्रा जी हैं, वेलकम कहेंगे, जी हैं कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्ला कहेंगे, और यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाही व बरकातहू।
5: वालेकुम सलाम भाईजान, कैसे हैं आप?
0: मैं फर्स्ट क्लास, A1, टॉप ऑफ द वर्ल्ड।
5: टॉप ऑफ द वर्ल्ड ना, ये तो जब अतिका जी आई सबसे टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो गए।
0: वाह जी वाह, क्या कहने, क्या कहने जी, आपने खूबसूरत अंदाज है, बड़ा प्यारा अंदाज है सबका, एक से बढ़कर एक कॉलर है, और
5: जी को शायरी लिखती रहती हो।
0: हाँ जी जी,
5: वो हफ्ते में एक शायरी वो कम्प्लीट करती हो, फिर बात में आती हो।
0: वाह जी वाह, क्या कहने जी,
5: उसको बहुत सलाम।
0: वालेकुम सलाम।
5: तो हमारा शकील भाई बानली वाला, वो भी आ जाएंगे, कुछ अच्छा सब पैगाम लेके आएंगे।
0: हाय हाय हाय, क्या कह रहे हैं, उनकी क्या बात, उनका हम रास्ता देख रहे हैं, उनका दरवाजा खोल के रखा हुआ है।
5: हाँ, उसके बाद हमारा जावेद मीर भाई है
0: जी,
5: हमारा मोहम्मद हनीफ भाई है, साजिद भाई है, वजीद भाई
0: जी,
5: हमारा उस्ताद चौधरी फरियाज भाई, उसकी लाइन क्यों कट गई
0: पता नहीं, उन्होंने फोन किया, मैंने होल्ड किया तो एकदम ही बंद हो गया, मैं होल्ड किया तो चले गए, पता नहीं क्या वजह, कोई मसला उनका वहाँ पे, इंटरनेट का मसला है वहाँ पाकिस्तान में, तो शायद कोई गड़बड़,
5: इतने दफे मुल्क जाता है उसको बोलो बड़े वाला ताल दे दो,
0: बड़े वाला ताल है ना, ऐसा ही होता है, और वहाँ पे आपको पता है कि उस इलाके में फिलहाल जो ना वो पूरा इलाके में इंटरनेट बंद है, तो शायद कोई इंटरनेट की वजह से कोई मसला हो रहा है जी।
5: उसके बाद साजिद पहलवान है
0: जी,
5: इकबाल भाई है हमारा, सईद ईसान भाई है, पप्पा सफीक है
0: जी,
5: डॉक्टर मलिक साहब है, हमारा रफी साहब है,
0: हाय हाय,
5: रॉबिन्सन है जो न्यूयॉर्क से आपका सुन रहे हैं,
0: माशाल्लाह वेलकम कहेंगे उनको भी जो न्यूयॉर्क में सुन रहे हैं, अमेरिका में सुन रहे हैं, वेलकम जी, आने खुश हमदीद।
5: उसके बाद हमारा परवेश खान भाई है, खान है
0: जी,
5: उसके बाद आते हैं हमारी आशिया जी
0: जी,
5: आशिका जी, सलीना जी, सिमी जी, रेखा जी, अमिता जी, सितारा जी, मिस्टर मिसेस पटेल, जो जो सुन रहे सबको हमारा बहुत बहुत सलाम।
0: वालेकुम सलाम।
5: तो ये कुछ ये करता हूँ, मुझे मेरा ख्याल आपके सिस्टम में ये गाना तो नहीं होगा।
0: देखते हैं कौन सा गाना लेके आए, और खूब जब ही आप लेके आते हैं खूबसूरत गीत होता है वो सिस्टम में है ही नहीं है, पता नहीं क्या वजह है। पिछले हफ्ते आपने गाने गुनगुनाए, वो आपको मेरे ख्याल आपने सिस्टम को देख लिया है कौन सा गाना हमारे पास है। ऐसा ही है।
5: जी अच्छा, तो शुरू करता हूँ।
0: जी जी
5: जी,

0: थैंक यू जी।
1: कमाल कमाल कमाल, ब्यूटीफुल, वाह हा हा, क्या बात है। बड़े दिनों के बाद ये मैंने गाना सुना है, और वो भी आपकी खूबसूरत आवाज़ में, और बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी तरफ से ये आपके लिए।

0: क्या बात है मेरे भाई के, क्या बात है। वो ये गाना था और सिस्टम में, और आपके लिए हम पेश करेंगे थोड़ी देर के बाद, वो पूरा गाना सुनाएंगे आपको जब भी मुझे मौका मिला। क्या बात है, क्या बात है। देखो ये गाना मिल गया और यहाँ पे आ गया, और ये जो गाना है खूबसूरत गाना, वाकई मेरे गाना बड़े दिनों के बाद ये मैंने गाना सुन रहा हूँ। और हमने यही कोशिश की है कि जब भी आपको गाना गुनगुनाता है तो मैं कोशिश करता हूँ उसी वक्त ही गाना पेश कर दूँ, और कई दफ़ा कामयाब हो जाता हूँ, कई दफ़ा नहीं होता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सब गाने नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पे हमने छोटी सी ब्रेक करेंगे और उसके बाद बाबी जान के हम सुनेंगे बहुत खूबसूरत आवाज। क्यों नहीं सुनाएंगे सर, जब क्यों नहीं सुनाएंगे, आपके लिए सुनाएंगे गाना, पूरा का गाना सुनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे हमने करना है टाइम चेक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पे हमने करना है टाइम चेक।
1: सनराइज रेडियो, your soundtrack, your time check.
0: Well, our time in the studio is 44 minutes past 9 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night. Wherever you are, keep a locked on, keep a lockdown with the Parviz Khan. यहाँ पे छोटी सी नन्नी मुन्नी सी ब्रेक की, ब्रेक के फौरन बाद हमारा साथ दे रहे हैं हमारी पापी जान सुमित्रा जी हैं, ऑल द वे फ्रॉम मिल्टन कीन लंदन से। और क्या कहने जी, क्या कहने अनसराउंड अबाउट, और बहुत अच्छा लगा। और यू ट्यून इन विद रेडियो 100.6 FM, 103.2 FM क्रॉस द वेस्ट Yorkshire, और यहां पे छोटी सी नन्नी मुन्नी सी ब्रेक होगी, कीप इट अप।
1: Free courses at Shipley College. Free teaching assistant courses, free health and social care courses, free childcare courses, free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.
2: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

0: राइट वेलकम बैक। और यहाँ पे हमारा साथ देने सुमित्रा जी हैं, हमारे पापी जान हैं ऑल द वे फ्रॉम मिल्टन कीन्स से। और यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: वालेकुम सलाम भैया,
0: हाउ आर यू पापी जान, हाउ आर यू डूइंग, यू गुड?
1: मैं
0: फर्स्ट क्लास ए वन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और गाना सुना है हमारे गुरु जी ने, कमाल कर दे, बड़े दिनों के बाद ये मैंने गाना सुना है और उनकी खूबसूरत आवाज में।
1: मैंने भी ये गाना बहुत दिन के बाद सुना,
0: वाकई कोई शक नहीं है, वेरी नाइस है और इतना खूबसूरत गीत है, पता नहीं कहाँ के गुम हुआ था ये गीत। और
1: नहीं बता
0: क्या कहने, क्या कहने। और आज कौन सा गीत आप लेके आई?
1: चलो मैं भी कोशिश करती हूँ।
0: जी जी, गो अहेड।
1: गाना इतना नहीं होता लेकिन जो मिले गा लेती।
0: आपकी चॉइस अच्छी है, बहुत खूबसूरत गीत आप गुनगुनाती हैं। जी
1: मैं गा लेती हूँ इसके लिए भी।
0: जी वाह जी वाह।
1: सबका नाम बोल दो।
0: जी जी क्यों ना, की गो अहेड, गो गो अहेड।
1: भाई हमारा बंगली वाला जावेद भैया है, मोहम्मद हनीफ भैया है, साजिद भैया है, फिर वाजिद भैया भी, चौधरी फरियाद भैया, सज्जाद पहलवान भैया, इकबाल भैया, पापा शफीक भैया है, हमारा मोहम्मद रफी भैया है, वो आएगा ना अभी,
0: वो हमारा साथ दे रहे हैं, वो आपके बाद आएंगे माशाल्लाह।
1: ना वो तो इसको आना ही पड़ेगा फिर तो।
0: क्या कहने,
1: अयुब कयूब साहब भैया,
0: अब्दुल कयूम साहब, जी जी अब्दुल कयूम साहब, फ्राइजिंग और जी, न्यूयॉर्क में प्रोग्राम सुना जा रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया उनका, वेलकम जी, है ना, खुश आमदी कहेंगे उनको भी। और जब भी आपका मौका मिले आप फोन करें और हम भी आपकी आवाज़ को सुनेंगे, क्योंकि हम ही बेताब हैं आवाज़ सुनने के लिए बैठे हुए यहाँ पे। और बहुत कुछ
1: बात किया इसके साथ, लेकिन रेडियो में आए तो अच्छा लगेगा।
0: हाँ अच्छा लगेगा, क्योंकि उनके बड़े मशहूर है माशाल्लाह, बड़ी बड़ी प्यारी हस्ती है माशाल्लाह हमारे।
1: कितना शौक है,
0: सुनते हैं माशाल्लाह, क्या कहने, वाह
1: अच्छा लगता है इसको,
0: वेरी पॉपुलर माशाल्लाह, बहुत ही पॉपुलर है और सब उनको जानते हैं। जी जी
1: चलो, मैं सबको, मेरी सखी सहेली में हमारे आशिया जी है,
0: जी
1: अतिका जी है, हमारा अतिका जी ने आजकल गाना नहीं गाती, वो अच्छा लगता है गाना,
0: जी
1: लेकिन शायरी बहुत अच्छी होती है इसकी।
0: जी
1: सलीना जी है, सिमी जी है, रेखा जी है, अमीरा जी है, सितारा जी है, जितने लोग आते हैं
0: जी,
1: वो अच्छा कॉलर में सबको सलाम नमस्ते।
0: वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते जी,
1: सलाम भैया
0: जी, वालेकुम सलाम।
1: मेरा गाना है दिल दिया दर्द दिया,
0: हाय हाय हाय, क्या कहने, वाह
1: मैं कोशिश करूँ गा सकूँ।
0: जी जी क्यों नहीं, गो अहेड।

0: वाह वाह वाह पापी जान, क्या आवाज़ आपने पाई है और बहुत खूबसूरत गीत आपने गुनगुनाया। बड़ा ही अच्छा गीत है और बड़ा ही मशहूर मकबूल गीत है। और आवाज़
1: बहुत लंबा है मोहम्मद रफी जैसा।
0: वाह वाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आपका अंदाज बड़ा प्यारा अंदाज है और आपके जो गाने की चॉइस है ना, बहुत ही नायाब है, बहुत ही खूबसूरत है और यूनिक द ओन वे इज वेल, और बड़ा ही अच्छा लगा। और जैसे
1: मोहम्मद रफी भी है कुछ नहीं,
0: हाँ मोहम्मद रफी सब आए हैं, आ रहे हैं, वो तैयार हो रहे हैं, वो हमारा साथ देने आपके बाद वो आएंगे इंशाल्लाह। जी
1: जो जो आता है इतना अच्छा अच्छा कॉल रहेगा।
0: आज हमारे मोहतरम आ गए वापस हॉलीडे से, शहीद एहसान साहब हैं और वो भी आएंगे, और वो हॉलीडे में थे टर्की में, तो वो आज आ गए हैं और माशाल्लाह वो भी हमारा साथ देंगे थोड़ी देर के बाद।
1: जी भैया जो जो आता है
0: जी,
1: सुनने में मजा भी आता है, इसकी आवाज सुनने में अच्छा
0: लगता है। हाय हाय हाय, क्या कहने, ये आपकी खूबसूरती है, देखो आप खुद अच्छी हैं और दूसरों की अच्छाई कह रही हैं, ये होता है ना खूबसूरती। हमारा ही मकसद यही है कि एंटरटेनमेंट हो और सब एक दूसरे के साथ प्यार करें, मोहब्बत करें,
1: बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा लगता है जी, इस वीकेंड और इसे मिड संडे का और वीकेंड का प्रोग्राम है तो अच्छा लगता है, सब मिल के बैठे हुए हैं और प्रोग्राम को पसंद करते हैं, इंजॉय करने जा रहे हैं, आप जैसे माशाल्लाह मेहनत करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा और हमारी तरफ से, और ये मैं आपके लिए पेश करना चाह रहा हूँ, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप एंजॉय करेंगे, मेरी तरफ से अप्रिसिएशन है आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, रब रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। दैट वाज हमारे सुमित्रा जी ऑल द वे फ्रॉम मिल्टन कीन्स से हैं, हमारे गुरु जी गिदन भाई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों का शुक्रिया अदा करें। व्हाट अ ब्यूटीफुल कपल माशाल्लाह, हमेशा ही मुझे सपोर्ट करते हैं, हौसला अफजाई कहीं खुशी हो या गमी हो, और दे आर सच अ लवली लवली, जितनी भी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का, और बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें, और बहुत बहुत शुक्रिया इन दोनों का। और यहाँ में हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, उनसे भी हम कलाम करेंगे, और उस तो बाद माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह उनसे साथ बात करेंगे क्योंकि वो नेक्स्ट आवर में आएंगे और फिलहाल हमारा साथ दे रहे हैं। और यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, सीने में ठंड पेगी, आप आ गए माशाल्लाह, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारा भाई आया और हम गाना सुनेंगे आपकी खूबसूरत आवाज़ में। देखो कितने आपके चाहने वाले हैं और वो इंतजार।
2: मेहरबानी सर, आपकी भी और उनकी बहुत बहुत मेहरबानी।
0: आजकल आप छा गए मेरे भाई दुनिया में, देखो कितना प्यार करते हैं आपके साथ और आपकी तारीफ करते हैं, गानों की तारीफ करते हैं, और आपके इतने फन फॉलोअर्स हो गए, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा इंतजार करेंगे, फिर आराम से आपको नेक्स्ट आवर में हम लेके आएंगे और आराम से आपने गाना गुनगुनाना है और आपकी जो खूबसूरत आवाज है उसको हम सुनेंगे, ठीक है?
2: नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू,
0: बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी तरफ से ये आपके लिए। ये थे हमारे मोहम्मद रफी साहब, और यहाँ पे देखो यहाँ पे ये कौन है हमारी महफिल में, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, चौधरी फरियाद साहब, बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला, चौधरी साहब चौधरी साहब चौधरी साहब खामोश हो गए, अल्लाह खैरी करे, चौधरी साहब बिस्मिल्ला अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, चौधरी साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही, अल्लाह खैरी करे, और आप थोड़ा जो होल्ड करेंगे आपको नेक्स्ट आवर में लेके जाऊंगा, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमारा साथ देने, और शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब दोस्तों का। और यहाँ पे मैंने क्या करना है कि क्योंकि मैंने उनको होल्ड डाला हुआ है और होल्ड किया हुआ है, और यहाँ पे और नेक्स्ट आवर में, क्योंकि अभी आपको बताया टाइम बहुत ही कम है इस आवर का, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं किसी को ले कर जाऊँ और वहाँ पर और उनको कहूँ कि यार आप इंतज़ार कर लें, न्यूज़ ब्रेक आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। एंड इन मीन टाइम I'm going to do is I'm going to give you a little bit information about the Sunrise Radio, and yes, you're listening to Sunrise Radio on 100.6 FM, 103.2 FM across West Yorkshire, not forgetting you can hear on DAB Plus on Halifax, Manchester, East Lancashire, Blackburn, Burley, Darwin mein, aur ye jo khoobsurti hai aap doston ki hai, you can also download the Sunrise Radio app on www.sunriseradio.fm. और ये वो खूबसूरती हो रही है। देखो यहाँ पे संडे रेडियो में क्या क्या नहीं होने वाला है और बहुत कुछ आने वाले वक्त में बहुत कुछ होने वाला है, बिलीव करें। ऑन यस संडे रेडियो लिसनर चॉइस अवार्ड 2026 आर कमिंग सून, सेलिब्रेटिंग द बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशन, वेन्यूज, आर्टिस्ट यू लव। वोटिंग विल बी एक्सक्लूसिव टू लिसनर्स क्लब मेंबर्स और जॉइन फ्री नाउ आर सनराइज डॉट रेडियो एंड कीप लिसनिंग फॉर मोर डिटेल्स। दैट इज लाउड एंड क्लियर, आई एम श्योर यू हैव हर्ड इट एंड एवरीबॉडी आर ड्राइविंग एंड ड्राइव विद केयर। एंड इफ यू आउट एंड अबाउट मेक श्योर यू आर ट्यून विद सुंदर रेडियो, मेक श्योर यू डाउनलोड द सुंदर रेडियो अप एंड लिसन टू द अप एज वेल। एंड लॉट ऑफ यू हैव गॉट न्यू ब्रांड न्यू कार्स एंड दे आर ऑलरेडी गॉट द फैसिलिटी फॉर DAB प्लस इन यॉर्कशायर एंड सराउंडिंग एरिया ऑफ UK। तो ये भी एक खूबसूरती है, आप दोस्तों का प्यार मोहब्बत चाहत है, देखो कि कितनी फैसिलिटीज हैं संडे रेडियो के साथ है। और हमें अच्छा लगे कि आप ये हमारा साथ दे रहे हैं और डिफरेंट वे डिफरेंट, क्योंकि हम कहते हैं कि आप कनेक्ट करें हमारे साथ, कनेक्ट करें हमारे साथ, यू नो तावन करें। एंड वी आर गिविंग सो मेनी डिफरेंट वे ऑफ कनेक्टिंग टू सनराइज। एंड इंशाल्लाह जो आने वाला वक्त है, आने वाला दिन है, इज गोना गेट बिगर एंड बेटर एज वेल। एंड यस यू आर लिसनिंग टू सुनर रेडियो ऑन लंदन में, वेस्ट लंदन में सुना जा रहा है। एंड आई लव टू हियर फ्रॉम द वेस्ट लंदन एज वेल बिकॉज द फीडबैक हैज़ बीन वंडरफुल फ्रॉम द लास्ट वीक। आई हैड अ लॉट ऑफ कॉलर्स फ्रॉम लंदन, जैसे हमारे गीता जी हैं और हमारे रूबी जी हैं, एंड दे आर लिसनिंग टू लंदन as well, और सईद एहसान है and he's already from London, and वो भी हमें याद करते हैं। और काफ़ी दोस्त जो हमारे दोस्त अहबाब हैं और हमारे बहुत ही अच्छे हमारे भाई हैं हक साहब जो लंदन में, लोधी साहब हैं जो लंदन में हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, हमेशा ही सुनते हैं और हमेशा ही हमारी तारीफ करते हैं, तो उनका भी मैं शुक्र गुजार हूँ, ममनून उनका। एंड ही इज़ माशाल्लाह बड़ी एक खूबसूरत हस्ती हमारे लंदन की, और लॉट ऑफ यू माशाल्लाह यू नो लोधी साहब क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह UK में एंड स्पेशली इन लंदन में। किस किस का नाम लूँ लंदन में, और क्योंकि हमारे जो चाहने वाले हैं माशाल्लाह जो फ़ोन करते हैं और ज़रा अफजाई करते हैं, तो ये खुशी की बात है और खूबसूरती है, आप दोस्तों का प्यार मोहब्बत है चाहत है खलूस है कि आप हमें याद करते हैं, तो हमारा साथ दे रहे हैं। चौधरी फरियाद साहब भी, महमूद रफ़ी साहब भी हमारा साथ दे रहे हैं और यहाँ पर न्यूज़ ब्रेक करेंगे। अल्लाह हैरी करे, देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है। सबके लिए अपने दुआ करनी है, कीप इट लॉक्ड विद सनराइज रेडियो।
3: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
4: At 10, Princess Diana's brother says as an uncle whose sister died in preventable circumstances, he worries about Prince Harry not having police protection. The Duke and Duchess of Sussex lost taxpayer-funded security when they stepped down as working royals.

0: All right, that was a wonderful tune, a hit of the hour. आपने पसंद किया, enjoy किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और आपके लिए था. और गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपका फेवरेट गीत आपने गुनगुनाया भी था और बहुत अच्छा लगा. और यहाँ पे हमने करना है टाइम चेक.
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Well, our time in the studio is 7:07 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on, keep it locked on with the Parviz Khan. यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त, जितनी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है. मोहम्मद रफी साहब हमारा साथ दे रहे हैं. वेलकम जी अनो, खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. कैसे हैं सर जी?
0: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. आए भाइयों की दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का करम है माशाल्लाह. और हमें अच्छा लग रहा है कि आप हमारा साथ दे रहे हैं. आपने मुझे कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए. ये आपके लिए सर, बहुत शुक्रिया. यू आर वेलकम सर, यू आर वेलकम. ये आपके लिए था यार मेरे भाई.
2: बड़ी मेहरबानी आपकी भी और तमाम सुनने वाले बहन भाइयों की भी जो हमारे गीत पसंद कर रहे हैं.
0: जी जी माशाल्लाह.
2: मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दरूदो सलाम, उन पे लाखों करोड़ों दरूदो सलाम. सभी से जुदा जिसका अंदाज है,
0: आहा,
2: फलक ता जमीन जिसकी परवाज है,
0: वाह,
2: वही जिन पे हमको नाज है, वही जिन पे सारे सनराइज रेडियो को नाज है. परवेज जी आप ही की तो वो आवाज है.
0: आहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत बहुत शुक्रिया.
2: यू आर वेलकम सर, यू आर मोस्ट वेलकम.
0: क्या बात है, क्या बात है आपकी. आप खुद अच्छे हैं माशाल्लाह और दूसरों की तारीफ करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है. बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत
2: बड़ी मेहरबानी सर, शुक्रिया. और ये गीत आपके लिए
0: जी.
2: मोबीन साहिल, अमीर साहिब, डॉक्टर पायशा, गुरु जी. भाई बाबी सेबा
0: जी,
2: और तमाम सुनने वाले बहन भाइयों के लिए.
0: जी जी.
2: बाबी साहब ने अभी एक गीत पेश किया था फिल्म दर्द दिया,
0: दिल दिया
2: से
0: जी.
2: और मैं भी यही एक गीत पेश करने चला हूँ उसी फिल्म से,
0: क्योंकि
2: बाबी साहब की नजर करता हूँ.
0: हाय हाय हाय, क्या कहने, बहुत शुक्रिया, थैंक यू.
2: दिल दिया दरे दिलिया, दिल

मैं क्या क्या न किया, दिल दिया दरे दिलिया, कभी फूलों में गुजारी कभी कांटों पे जिया, दिल दिया दरे दिलिया, क्या कहूँ तेरे लिए मैंने आंसू भी पिए, कभी खामोश रहा कभी शिक

0: हाय हाय वाह क्या कहनी।
1: दिल दिया दरे दिलिया कभी फूलों में गुजारी कभी कांटों पे जिया। दिल दिया दरे दिलिया प्यार की जान है तो दिल का अरमान है तो कौन दुनिया से डरे जब निगेबान है तू। अपनी कश्ती को सहारे पे तेरे छोड़ दिया। दिल दिया दरे दिलिया दिल रुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या।

नहीं जज्बात करीबा जाओ, याद रह जाएगी ये रात करीबा जाओ। सारे

0: से हाय हाय
1: सर्द
0: झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले,

0: नंग घबराना। शुक्रिया जनाब,
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या गीत आपने गुनगुनाया और टावर हाउस मूवी का गाना गुनगुनाया आपने, वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत खूब।
0: अगर एक जोक एक लतीफा का सुना दूं अगर इजाजत
1: दें। क्यों नहीं जी, क्यों नहीं जी, क्यों नहीं जी।
0: माँ बेटा दोनों धूप में बैठे हुए थे, तो माँ अपने बेटे से कहती है कि मौली साहब कहते हैं कि अगर 10 बार सूरह अखलास पढ़ी जाए तो अल्लाह ताला जन्नत में एक घर बना के देता है
1: जी।
0: तो वो फिर बेटा पढ़ने लगता है तो साथ माँ भी पढ़ने लगती है, तो बेटा कहता है अम्मी आप ना पढ़े, हम दोनों एक साथ एक ही घर में रहेंगे।
1: माशाल्लाह, क्या कहने, क्या कहने, वाह जी वाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज, बहुत प्यारा अंदाज।
0: क्या दोनों ना पढ़े, आप ना पढ़े, हम दोनों
1: इकट्ठे रहेंगे, वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत, क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जो मैंने गीत नदीम मंसूर अगर गाते तो बहुत जबरदस्त।
1: आपकी भी खूबसूरत आवाज है मेरे भाई, आपने भी बहुत ही कमाल का गीत गुनगुनाया, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगा। और मेरी तरफ से ये आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए और बहार आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और ये थे हमारे अब्दुल कयूम साहब जिन्हें कमाल ही करते हैं, और क्या खूबसूरत अंदाज इनका, बहुत खूबसूरत गीत गुनगुनाते हैं और शेर शायरी भी करते हैं, बड़े ही कमाल के, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। और हमें अच्छा लग रहा है आप हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ में हमारा साथ दे रहे हैं हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, हमारे दिल अजीज़ हैं, बड़े प्यार करने वाले हैं, और बड़े इनके साथ माशाल्लाह एक बहुत अच्छा एक रिश्ता है, और बड़ा ही प्यारा रिश्ता है इनके साथ माशाल्लाह। और जितनी भी मैं इनकी तारीफ़ करूँ कम है, और क्योंकि ये जो हमारे बुजुर्ग हैं माशाल्लाह ब्रैडफोर्ड की आन और बान और शान है हमारे, और अल्लाह पाक में शान को खुश रखे, शाद आबाद रखे, और बड़ी प्यारी हस्ती है माशाल्लाह, जब इनके साथ मुलाकात होती है बड़े अच्छे अदबदार से, बड़े प्यार के साथ, और बड़े ही एक अच्छा अंदाज इनका। और काश दुनिया में ऐसे ही अच्छे लोग होते इस दुनिया में, और इन जैसे लोग माशाल्लाह, तो हम भी और फ़ायदेमंद में, और सब ही फ़ायदेमंद में है माशाल्लाह, और पूरी दुनिया जो ने कमाल की है। और ये है हमारे उस्ताद मोहतरम एम खान जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि वबरकातहू।
2: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातहू। आपने जो कलमात दुआया कलमाते हैं
1: जी जी,
2: आज उसरा बन जाऊं, और जैसा आपने फरमाया रिश्ता
1: जी,
2: ये रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल है, ऐसा रिश्ता कायम करें अल्लाह ऐसा करे
1: जी,
2: सुबह क़यामत के बाद भी ये रिश्ता बाकी
1: कायम रहे माशाल्लाह। आमीन सुम आमीन हक आमीन।
2: तो हमारे फरियाद साहब ने बड़ी दिल की फरियादें
1: नहीं माशाल्लाह, क्या कहने,
2: कौम और मिल्लत और ख़वातीन हज़रात के सामने और कौम के सामने पेश की हैं
1: जी जी,
2: उनकी धड़कने और उनकी वाद की जो गहराई है अल्लाह उसको सुनने की तौफीक अता फरमाए।
1: आमीन सुम आमीन।
2: हमारा एक बात इर्शाद फरमाते हैं
1: जी जी,
2: के मुझे फरियाद साहब की गुफ्तगु सुन के मुझे ये अलामा इकबाल के शायर याद आ गए
1: जी जी,
2: चराए मोहब्बत में है उशरत, चराए मोहब्बत में है उशरत, मंजिल हराम शोरिश तूफान हलाल, लज्जत साहिल हराम, इश्क पे बिजली हलाल, इश्क पे हासिल हराम, इल्म है इब्नुल किताब, इश्क है आगे मियां साहब का
1: जी जी माशाल्लाह,
2: मुझे फरियाद साहब की फरियाद दिल की फरियाद
1: जी,
2: बड़ी दिल को अहला कर रख गई है
1: माशाल्लाह, छू कर गई जी,
2: साहब ये लोग आदमी है उसकी क्या
1: माँ क्या बात है क्या बात है माशाल्लाह
2: आलिम में साहिब इलम के लोगों के हर जो सुखन होते हैं वो बड़े कीमती जवाहरात में तकसीम होते हैं
1: बेशक बेशक
2: मियां साहब इरशाद फरमा दे ना
1: जी जी
2: जी
1: जी

रहूं पर तू पेई विच बारों मुफ्त नगरी मुसदी रस्ता छो नबी दा तुरिया।

कलर कोलू न उगदा रस्ता साफ नदी।

0: दिल की
1: माशाल्लाह। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया ख्याल आपने हमें याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। ये थे हमारे उस्ताद मोहतरम माशाल्लाह एम खान जी, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। और हमने यहाँ पे जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमारे साथ कॉलर हैं।
2: सनराइज रेडियो, your soundtrack, your time check.
1: Right, time in the studio is 45 minutes past 10 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on and keep it locked on with the Parviz Khan. Yahan pe choti si break karenge, keep it locked.
3: Sunrise Music.
4: Free courses at Shipley College. Free teaching assistant courses, free health and social care courses, free childcare courses, free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.
5: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, Milton Keynes, and West London, with even more areas coming soon. Call 01274 735043 or email sales@sunriseradio.fm.
1: राइट, वेलकम बैक लिसनर्स, और योर लिसनर सुन रहे रेडियो, और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे बहुत ही खूबसूरत और हमारे मुर्शिद हैं। वेलकम कहेंगे, जी कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
6: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: माशाल्लाह, कैसी तबीयत है मेरे भाई की?
6: अल्लाह की
1: मेहरबानी,
6: शुक्र है आपकी
1: दुआएं, आप सुनाए। आप आए और बाहर आ गई, माशाल्लाह, क्या कहने जी।
6: तो तमाम सुनने वालों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
6: तो टाइम थोड़ा है इसलिए
1: जी
6: सकता
1: जी।
6: जावेद कमर उनकी एक छोटी सी गजल लाया हूं।
1: जी जी अर्शाद।
6: मुझसे तो अब ये नजारा देखा नहीं जाता।
1: वाह जा वाह वाह, क्या कहने।
6: मुझसे तो अब ये नजारा देखा नहीं जाता, कोई उतरा हुआ चेहरा देखा नहीं जाता।
1: क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब।
6: उनकी आंखों के रुला देते हैं आंसू मुझको,
1: वाह।
6: जुल्म इंसान पे होता देखा नहीं जाता।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह।
6: फूल अफसुरदा हैं और हैं सहमी हुई कलियां,
1: वाह।
6: ऐसा आलम तो चमन का देखा नहीं जाता।
1: बहुत खूब बहुत खूब।
6: बंद नफरत की सियासत को करो अहले वतन,
1: वाह।
6: बंद नफरत की सियासत को करो अहले वतन, हमसे अब तो ये तमाशा देखा नहीं
1: जाता। वाह वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत खूब वाह।
6: कौन आता है भला बात हमारी सुनने,
1: वाह।
6: दुख किसी से भी हमारा देखा
1: नहीं जाता। आय हाय हाय हाय, क्या कहने।
6: खुद ही जब मंजिले मकसूद का सफर करना हो,
1: आए, वाह।
6: फिर किसी का भी सहारा देखा
1: नहीं जाता।
6: शुक्रिया। आखिरी शेर कहते हैं, खून मजलूम से अखबार हुई सुरख कमर,
1: वाह।
6: खून मजलूम से अखबार हुई सुरख कमर,
1: वाह।
6: खून आलूद सवेरा देखा
1: नहीं जाता। आए हाय हाय हाय, क्या कहने क्या कहने, वाह।
6: छोटे कुछ शेर है अनवार उलाक।
1: अनवार हक जी जी, अर्शाद अर्शाद।
6: कहते हैं, तेरी खातिर ऐ दिले बेताब हैं बर्बाद हम,
1: वाह। क्या कहने, बहुत खूब।
6: फिर रहे हैं मारे मारे चार सू नाशाद
1: हम, आए हाय वाह वाह।
6: जाके बज़्म में यार में खुद ही हुए हैं जब असीर,
1: वाह।
6: इस तरह लाए जबां पर शिकवाए बेदाद हम,
1: वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब।
6: आज तक जिसने किसी पर रहम खाया ही नहीं, उस पे होता क्या असर करते भी जो फरियाद हम,
1: वाह बहुत खूब बहुत खूब।
6: एक ना एक दिन पंजाए सयाद में आना ही था, रहते कैसे गुलिस्तां में इस तरह आजाद।
1: वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब।
6: हर तरफ फैला हुआ जब तेरा दामे फरेब,
1: वाह,
6: कब तक बचते तेरे फंदों से ऐसे याद हम।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब।
6: गुलिस्तां में,
1: वाह
6: गुलिस्तां फिर भर में उसी शाख पर गिरी बिजली।
1: हां
6: गुलिस्तां भर में उसी शाख पर गिरी बिजली,
1: वाह
6: रख रहे थे आशियां की जिस जगह दुनियाद हम।
1: वाह क्या कहने क्या कहने।
6: कतलगा में पूछता है सितमगर हाले दिल,
1: वाह
6: ज़बा कर दे के कहेंगे कुछ ना अब जल्लाद।
1: आए हाय हाय, वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब, वाह।
6: बाकी शेर कहते हैं
1: जी अरशाद,
6: कुछ समझ में नहीं आता है आमर इसका भेद।
1: वाह क्या कहने।
6: कुछ समझ में नहीं आता है आमर इसका भेद, एक जालिम के लिए क्यों हो गए बर्बाद।
1: आए हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने।
6: ठीक है, बड़ी
1: बड़ी मेहरबानी खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और महफिल आपने लूट ली, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें हमें, बहुत बहुत शुक्रिया खैर, रब रखा, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, शाद आबाद रखे। ये थे हमारे मोहतरम शकील साहब। यहाँ में हमारा साथ दे रहे और महबूब लाई साहब हमारा साथ दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
0: वालेकुम सलाम।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, वेलकम जी, आनो खुश आमदीद, अहलन व सहलन
0: जी। थैंक यू जी, अभी लगता है टाइम थोड़ा है
1: सर जी, आपके पास है
0: अभी बाइशकील साहब को सुना, अहम खान साहब को सुना और चौधरी साहब को
1: जी,
0: सभी को मेरा बहुत बहुत सलाम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: और ये नजर करना चाहेंगे
1: जी जी जी जी इरशाद
0: महमूद सुल्तान कराची वाले
1: जी,
0: अजवेद मीर हैं, अतीका जी हैं और जितने भी अतीका जी के पास जितनी लिस्ट होती है
1: जी,
0: सभी के नाम।
1: वाह जी वाह
0: जी, ताकि वो सब कवर हो जाए।
1: वाह जी वाह, क्या कहने
0: जी। शायर लिखता है
1: जी जी,
0: सारी दुनिया के रिवाजों से बगावत की थी,
1: हाय हाय,
0: सारी दुनिया के रिवाजों से बगावत की थी,
1: वाह
0: तुमको याद है जब मैंने मोहब्बत की थी।
1: वाह वाह, क्या कहने।
0: तुमको याद है जब मैंने मोहब्बत की थी,
1: वाह,
0: उसे राजदार समझ के बताया था हाले दिल।
1: वाह वाह,
0: उसे राजदान समझ कर बताया था
1: हाले दिल। वाह,
0: फिर उस शख्स ने मुझसे ये दावत की थी,
1: हाय हाय, क्या कहने।
0: थैंक यू। फिर उस शख्स ने मुझसे ही ये दावत की थी।
1: वाह,
0: जब तेरी यादों ने आंखों को भिगोया था।
1: वाह,
0: जब तेरी यादों ने आंखों को भिगोया था।
1: वाह,
0: मैंने एक नाम की तस्बीह पे तलावत की थी,
1: हाय हाय हाय, वाह वाह वाह वाह वाह, क्या कहने।
0: मैंने एक नाम की तस्बीह पे तलावत की थी।
1: वाह,
0: उसको छोड़ के हंसते हुए घर आकर।
1: वाह,
0: उसको छोड़ के हंसते हुए घर आकर इतना रोए थे कि आंखों ने शिकायत की थी।
1: हाय हाय हाय हाय हाय, वाह वाह वाह वाह वाह, क्या कहने।
0: छोड़ के हंसते हुए घर आकर इतना रोए थे कि आंखों ने शिकायत की थी।
1: वाह,
0: मेरे उजड़ने का सबब जब भी किसी ने पूछा। मेरे उजड़ने का सबब जब भी किसी ने पूछा।
1: वाह,
0: मैंने बस इतना बताया कि मोहब्बत की थी।
1: हाय हाय हाय हाय, क्या कहने, बहुत खूब।
0: मैंने बस इतना बताया कि
1: मोहब्बत की थी। वाह,
0: सारी दुनिया के रिवाजों से बगावत की
1: थी। हाय हाय हाय, क्या कहने।
0: सारी दुनिया के रिवाजों से बगावत की थी। तुमको याद है।
1: वाह,
0: तुमको याद है जब मैंने मोहब्बत
1: की थी। हाय हाय हाय हाय, क्या कहने। क्या
0: याद है जब
1: मैंने मोहब्बत की थी। हाय हाय हाय,
0: इतना ही था।
1: बहुत ही खूबसूरत अंदाज, बहुत ही प्यारा अंदाज, और क्या कहने मेरे भाई, और छा गई मेरे भाई, क्या कहने शायरी में। वाह वाह वाह, जो अंदाज आपका, गाना हो या शायरी हो, कमाल की करते हैं, कमाल, बेमिसाल। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया, रब रखा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हमारे मोहतर, हमारे भाई, हमारे दोस्त, जितने की मैं तारीफ करूँ कम है, और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे भाई चौधरी रुखसार भाई मीठा जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
7: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، چشم روشن دل ماشا با کمال لاجواب با تعالی با عزت با وقار با ذوق با شوق، ہر دل جی شخصیت بہت نفیس بہت لطیف بہت شفیق، اور میرے پیارے بھائی چیمپئن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا علی مدد،
1: یا علی مدد، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
7: मोहतरम हजूर, कैसे हैं मुर्शिद आप सुना।
1: मैं तो ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास ए वन माशाल्लाह, और आपके आते आते आपने देर कर दी मेरे भाई।
7: सर यकीन करें कि शुरू से ही प्रोग्राम सुन रहा था
1: जी,
7: लेकिन माशाल्लाह इतना खूबसूरत, इतना उम्दा और इतना म्यारी और लाजवाब मैं क्या कहूँ आपके प्रोग्राम में, और
1: आपने मेरे लिए दुआएं करें और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह और ऐसे ही करते रहें, और जिसका हम खाते हैं उनके लिए हमारे लिए दुआएं करें, और माशाल्लाह आपकी की क्या बात है मेरे भाई, आप तो क्या हाल है, वाह आप मुझसे ज्यादा ही करीब है माशाल्लाह।
7: यार पता है क्या चैंपियन, मेरी बात सुने, दुआएं आपको कहने की जरूरत नहीं, यकीन करें कि मेरे लाभ पर और ये मेरे दस्त जो होते हैं ना वो हमेशा उसकी बारगाह में दस्त दुआ ही होते हैं।
1: हाय हाय हाय सदके जावन सदके जावन, मैं पता है वही बात होगी ना, मैं थोड़ा सा ग्रीडी हूँ ना, लालची हूँ ना, मैं क्या करूँ, दुआएं मुझे चाहिए, दुआएं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे माशाल्लाह जी।
7: बहुत सी दुआएं आपके लिए हैं और आपकी पूरी फैमिली के लिए, आपके साथ के लिए, एलो याल के लिए, और जिसका आपके साथ कोई भी रिश्ता कोई भी तल्लक कोई भी वास्ता है उन सब के लिए दिल से दुआ, यकीन करें कि ये जरूरी नहीं कि हाथ उठाए जाए, दुआ दिल से दी जाती,
1: दुआ दिल से दी जाती है। वाह वाह क्या कहने, वाह बहुत खूब।
7: तो सभी के लिए है, और मेरे ख्याल टाइम ही बहुत कलील है, तो माशाल्लाह अब मेरा ख्याल इस्लाम दुआ भी हो गया है, तो मेरे ख्याल काफी माशाल्लाह।
1: वो कहते हैं ना कि चोना चोना हो जाए, चोना चोना हो जाए।
7: आपका यकीन करें कि आपका हुक्म जो है ना,
1: नहीं अर्ज अर्ज अर्ज, आप मेरे भाई हैं और अर्ज करता हूँ मेरे सर आंखों में मेरे भाई,
7: आप मेरे लिए नायक काबिले इज्जत काबिले
1: सदके सदके
7: काबिले अजमत है, यकीन करें मेरे लिए मोहतरम है, तो इसलिए आपका हुक्म सर आंखों पर, यकीन करें कि माशाल्लाह जितनी यानी कि अतीका आप इसे लेके तो महबूब लाई तक माशाल्लाह जितनी खूबसूरत हस्तियां आ गई हैं, और जिन्होंने खूबसूरत अपने मखसूस अंदाज में जो कह दिया ना, तो आप मेरे जैसे कहते हैं ना कि हकीर बंदे की जरूरत नहीं है कुछ
1: नहीं कही, कोई बात नहीं और कोई बात नहीं, और आपकी आवाज को सुन के हमारे अब्दुल कयूम साहब भी वापस आ गए माशाल्लाह, और हमें अच्छा लग रहा है। जो अपना मौकिफ करे ना पूरा करे ना, जो भी आपके अल्फाज हैं जी,
7: अभी माशाल्लाह सुना था सबको, और हमारे उस्ताद मोहतरम मुकर्रम और मुअज्जम जनाब मोहतरम शकील साहब आए थे
1: जी,
7: और आप यकीन करे मैं ऑन द एयर कह रहा हूँ कि ऐसे उस्ताद मैं यानी के अभी मैं शायद वो सुन रहे होंगे और इस जरूर फरमाएंगे कि मैं जब उठता हूँ ना तो उनकी दुआ मेरे मोबाइल पर पहले आ जाती है।
1: हाय हाय हाय ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है माशाल्लाह।
7: और खुदा मैं जनाजे पे बैठा हूँ
1: माशाल्लाह,
7: ये देखे ना ये हैं बड़े लोग और बुजुर्ग जिनकी दुआओं से हम, मैं उठता हूँ तो मोबाइल देखता हूँ ना तो फजर के टाइम पहले उनकी दुआ आई होती है,
1: दुआ आई होती है माशाल्लाह सुभान अल्लाह।
7: बेटा बेटा सुता ना रो, उठ करो
1: उठ करो उठ करो, नमाज का टाइम हो चुका है, उठे वाह जी वाह।
7: अल्लाह ताला इन देखो इन बुजुर्गों का साया हमेशा हमारे सरों पर कैम और दैम रखे,
1: आमीन आमीन आमीन आमीन आमीन आमीन।
7: तो फिर मैं फिर जब उठता हूँ नमाज पढ़ के फिर मैं सभी को जो दो वो दुआएं भेजते हैं वो मैं फिर सभी अपने चाहने वालों को भेजते
1: हैं, चाहने वाले को भेजते हैं, क्या कहने,
7: अल्लाह ताला उनका साया हमेशा हमारे,
1: आमीन सुमामीन हक अमीन।
7: तो जनाब 3 मिनट रह गए हैं जनाब, तो मैं चाहता हूँ कि चल मैं छोटी सी पोएट्री आपको सुना दूँ।
1: जी जी जी जी,
7: शेर लिखता है, जो मुतमिन है तुझको अजियत में डाल का, वो शख्स तेरा है ही नहीं मत मलाल का।
1: हाय हाय हाय क्या कहने क्या कहने, वाह वाह वाह, ये आपने पत्थर की लकीर होगी जी, वाह जी वाह क्या कहने,
7: बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत आपकी चाहत, यकीन करें। शायद लिखता है, खुश हो रहा है तुझ पे जो कीचड़ उछाल कर,
1: हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय वाह,
7: कब तक रखेगा अपना गिरेबान संभाल कर,
1: हाय हक हक वाह वाह वाह वाह वाह।
7: एक दोस्त मेरा दुश्मनों के साथ जा मिला, लाजम है अब बढ़ाना कदम देखभाल कर,
1: हाय हाय हाय हाय क्या कहने क्या कहने।
7: आखिरी शेर चैंपियन भाई
1: जी,
7: जी, जी। एहद वफा में एक मुनाफिक के वास्ते, एहद वफा में एक मुनाफिक के वास्ते, मैंने भी रख दिया था कलेजा निकाल का,
1: हाय हाय हाय हाय क्या कहने मेरे भाई क्या कहने,
7: हकीकत पर मबनी
1: ये हकीकत है, ये हकीकत है, ये हकीकत है, खोने हकीकत है, वाह
7: ये दौरे
1: आज़रा
7: का,
1: ये दौरे आज़रा, ये दौर ऐसा जा रहा है, ये दौर ही ऐसा जा रहा है मेरे भाई, ये कियामत की निशानी है, कियामत बस नजदीक है जी।
7: सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, सही फरमा रहे हैं। और मेरे जाते जाते मैं जनाब सभी के लिए मेरी बहुत सी दुआएं हैं, और इस उम्मीद के साथ मैं जा रहा हूं कि आप ही मुझे अपनी नेक दुआ में याद,
1: हमेशा मेरे भाई आपके हमेशा ही और हमेशा ही करेंगे दुआएं करेंगे और हमेशा ही करते हैं मेरे भाई। आप जैसा इंसान इस दुनिया में, काश सारे दुनिया से हो जाए ना, तो ये जो दुनिया ना खूबसूरत, दुनिया वैसे ही खूबसूरत है, ये नहीं कि सब खूबसूरत हैं, अपनी अपनी जगह पर खूबसूरत हैं, और खूबसूरत हो जाए, और हमारे साथ बैठना اٹھنا قبول منظور فرمائے. بہت بہت شکریہ سر.
7: آپ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آباد و شاد رہے اور آمین. کراتے رہے.
1: آمین. اللہ حافظ اور شب خیر. اور میری طرف سے بھی اللہ حافظ اور شب خیر.
8: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day. This is Sunrise Radio. On the hour, every hour. This is Sunrise Radio Network News.
9: Sky News Centre at 11. Earl Spencer has accused the King of being astonishingly provocative and below the belt in the palace's response to claims in his new book. He says His Majesty told him we'll forget her soon enough in the run-up to Princess Diana's funeral. The palace says grief can cloud reason. Women's rights campaigners say all government departments need to commit and engage in a newly established task force if it's to be successful in tackling gender-based violence. It'll bring together local leaders, academics and organisations to address behaviours at work and online. The first session will focus on young people. Girl Guiding Ranger Ruby Swans shared one of her experiences.
10: It was football. I was the only girl in the team. And one of the boys turned to me on the bus and said, I don't even know why you're here. You should be back at school with the other girls.
9: The Liberal Democrats want to see Andy Burnham step